नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई सन 2026। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले कुछ ही पलों में हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
3: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और

0: आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
2: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे थे समाचार। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:05 हो चुके हैं। श्रोताओं, समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, और कार्यक्रम वंदना की शुरुआत हम करते हैं देशगान से। तो लीजिए सुनिए समूह स्वर में ये देशगान।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना में देशभक्ति गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली पेशकश एम एस सुब्बुलक्ष्मी की आवाज़ में गाया ये हरि भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। साईं बाबा के विचार पर अगर गौर करें श्रोताओं, प्रेम सबूरी और श्रद्धा पर आधारित हैं, जो जीवन को सरल और सकारात्मक बनाने की शिक्षा देते हैं। तो लीजिए सुनिए साईं बाबा का भजन लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में अगली पेशकश है आशा भोसले की आवाज़ में गाया ये फिल्मी भजन। श्रोताओं, श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा योगी है। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना। कहा भी गया है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।

श्रोता वंदना की समाप्ति हम कर रहे हैं माँ भगवती की अर्चना से, लता मंगेशकर के स्वर में गाए इस देवी भजन से।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन में बी के मंजूषा का आलेख।
1: महिला परिवार रूपी रथ का महत्वपूर्ण पहिया है और यदि इस पहिए को कमजोर बनाया जाता है तो स्वाभाविक ही परिवार के विकास की गति प्रभावित हो जाती है। चाहे कोई भी देश, कोई भी जाति हो, जब समाज में महिलाओं का स्थान बहुत नीचे हो जाता है तो उसके साथ ही होवनहार नागरिकों अर्थात बच्चों का स्थान भी नीचे हो जाता है। नारी का संबंध हमारे अतीत की कड़ियों से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारत की महान संस्कृति में नारियों को अति आदरणीय एवं पूज्य स्थान प्राप्त था। भारत में काली, दुर्गा, जगदम्बा, सरस्वती आदि देवियों की पूजा बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत की नारी अति गौरवशाली थी, जिनकी जड़ मूर्तियों के सामने आज भी मनुष्य नतमस्तक होकर स्वयं को बुराइयों से मुक्त होने की प्रतिज्ञा करता है। कोई भी देश,

व समाज कितना उन्नतिशील है अथवा रहा है, यह वहाँ की नारी की अवस्था से आंका जा सकता है। जिस देश में विदुषी, चरित्रवान एवं सद्गुण संपन्न नारियाँ हैं, वह देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा, क्योंकि नारी ही समाज की धुरी एवं संस्कृति की रक्षक है। नारी जननी है, उसके हाथों में जीवन है, परंतु कैसी विडंबना है, किसी ने नारी को माया का रूप कहा तो किसी ने अबला कहा, सर्पिणी कहा। अपने को अबला समझ इस प्रकार की उपेक्षा और शोषण झेलने वाली नारी आज तक भी यह निश्चित नहीं कर पाई कि आखिर समाज में उसका क्या स्थान है। वास्तव में नारी कोई अबला, माया या नर्क का द्वार नहीं है। नारी शब्द का अर्थ ही है बुराइयों का नाश करने वाली। कहा भी गया है, जब शक्तियां सो जाती हैं तो सारा संसार सो जाता है, और जब नारी में आध्यात्मिक जागृति आती है तो समस्त विश्व में नव चेतना आ जाती है। तो नारी अबला नहीं सबला है, नर्क का द्वार नहीं स्वर्ग का द्वार है। अब आवश्यकता है नारी की अंतर्निहित शक्तियों को जागृत एवं विकसित करने की। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री हासिल करना ही नहीं, स्कूल कॉलेज की शिक्षाओं के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा की परम आवश्यकता है। मस्तिष्क एवं बुद्धि के संतुलित विकास से ही सर्वांगीण विकास संभव है। नारी सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन न करे, बल्कि अपने त्याग, सूझ और कर्मठता से समाज के मूल्य को बनाए रखे। महिला समाज विभिन्न प्रयासों से जागृत होकर आत्मज्ञान, आत्मनिर्भरता के आधार पर श्रेष्ठ कर्म करे तो उनके लिए लौकिक, अलौकिक प्राप्तियों के द्वार खुल जाएंगी एवं मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना सहज हो सकेगी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में बी के मंजूषा का आलेख। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:35 है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। आज के इस भाग में गायक स्वर है रविंद्र साठे का और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्री राम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं, वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी

सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मानस गान। आज के इस भाग में स्वर थे रविंद्र साठे के। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे चंद पुराने सदाबहार गीत। कार्यक्रम होगा सदाबहार फिल्मी गीतों का। 7:10 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार, और 7:20 में आप रोज सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम रिले करेंगे समाचार प्रभात सुबह 8:00। चंद गैर फिल्मी गीत सुनेगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:15 पर। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, समय है सुबह 8:30। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप रोजाना सुनते हैं सुबह 9:00 से लेकर 10:00 तक। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम जिले की चिट्ठी अनुप्रसारित की जाएगी सुबह 10:00। चंद फिल्मी गीत सुनेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत में, समय

होगा सुबह 10:05 का। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, इसका समय है 10:30 पर। 11 बजे से लेकर 2:10 तक आप पुनः सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर 2:05 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनिएगा और 2:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 5 बजे आप सुनिएगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम और गुड इवनिंग बालाघाट, ये कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं शाम 6 बजे हमारे अपने केंद्र से। 6:30 का समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का जिसमें आप सुनेंगे चंद गैर फिल्मी गीत और गज़ल। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम पुनः प्रसारण करेंगे समाचारों का शाम 7:05 पर और शाम 7:10 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। किसान साथियों का अपना कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे 7:20 पर और किसान वाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7:30 पर। फिल्म संगीत में कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनाएंगे रात 8 बजे। 8:30 पर सुनेगा पॉप म्यूजिक का कार्यक्रम। 8:45 पर सुनेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। रात 9:30 से 11 बजे तक सुनेगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम विवरण, जिसमें हमने आपको जानकारी दी हमारे आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

FM बैंड 101.3 MHz पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए श्रोताओं, और समय हुआ है सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का। तो लीजिए करते हैं शुरुआत फिल्म गंगा जमुना के इस गीत के साथ। स्वर है मोहम्मद रफ़ी, धुन है ओपी नैयर की, और गीत है शकील बदायूनी के। तो लीजिए सुनिए फिल्म गंगा जमुना का ये गीत।

श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगली पेशकश फिल्म आम्रपाली से। गीत हैं शंकर जयकिशन के और बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं लीजिए सुनिए, फिल्म पूजा के फूल का ये गीत। आवाज़ है एक बार फिर लता मंगेशकर की, गीत हैं राजेंद्र कृष्ण की और धुन है मदन मोहन की। तो लीजिए सुनिए फिल्म पूजा के फूल से लिया ये गीत।

श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म है वो कौन थी, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की, बोल हैं राजा मेहंदी अली खां के और संगीत है मदन मोहन का। तो लीजिए सुनिए फिल्म वो कौन थी से लिया ये गीत।

0: श्रोताओं, लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने वाले कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों के जीवन में आएगी समृद्धि। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कल लाड़ली बहनों के खातों में भेजी योजना की 36वीं किश्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। श्री मोदी ने कहा कि देश के किसान भाई बहनों के हित में सरकार लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल हुई बैठक में विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबुधाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे।

0: विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। ये पिछले 5 महीनों में श्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच दूसरी मुलाकात होगी। बैठक के दौरान दोनों देश अपनी व्यापारिक रणनीति साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा भारतीयों के कल्याण की भी बातचीत इन मुद्दों में शामिल होगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होंगे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगावनी से जारी की। उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 35 किस्तें जारी हो चुकी हैं और कुल 55,926 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से महिलाओं के खातों में जमा की जा चुकी है। योजना की शुरुआत में 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
2: भूलती है हमारे लिए तो और आनंद है कि लाडली बहना योजना का भी लाभ यही दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के दरमियान कि आज से सबसे निवेदन है, देश की आधी आबादी माता बहनों की है, इनको लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दो। लेकिन कांग्रेस, ममता, डीएमके, समाजवादी सब लोगों ने बहनों का, माताओं का अपमान किया। और माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन कहा था माताएं बहनें सब भूल सकती है, अपना अपमान नहीं भूलती है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस निर्णय से अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ब्यूरो के निदेशक के रूप में श्री सूद के कार्यकाल को इस महीने की 24 तारीख के बाद भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में लू का प्रकोप बने रहने की संभावना जताई है। आज ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में तेज गर्मी का असर बना रहेगा। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में कल रात खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा।

अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में 16 मई को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका जिले के प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल श्री डेका यहां आयोजित आदि उत्सव 2026 कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगरमालवा जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर मेरा युवा भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर खंडवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शहरी क्षेत्र की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डिंडोरी जिले में टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान करने के उद्देश्य से जिले में आधुनिक एआई तकनीक आधारित कैट ऐप का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। भोपाल में जनगणना 2027 के अंतर्गत निगम सीमा में 3,60,000 से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है और 150 जनगणना ब्लॉकों में मकान सूचीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उधर रायसेन जिले में पुलिस लाइन परिसर में जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों ने युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों और हवाई हमलों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पन्ना में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने सत्र 2025-26 के सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम में 100% सफलता प्राप्त की है। वहीं झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा ग्राम साड में वनाधिकार अधिनियम के तहत ग्रामीणों से संवाद के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों के जीवन में आएगी समृद्धि। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कल लाडली बहनों के खातों में भेजी योजना की 36वीं किस्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में लू का अलर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। सुबह के 7:20 हुए श्रोताओं, और समय हुआ है कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट का।
1: नमस्कार बालाघाट।

श्रोताओं नमस्कार, बालाघाट के संघ को लेकर हाजिर हूँ मैं रश्मि। और आज इस कार्यक्रम में हमें तकनीक की सहयोग मिल रहा है अरुण सिंह परते व मनोज जैन का। तो आइए हमारी पूरी टीम के साथ स्वीकार करिए हम सब का स्नेही अभिवादन। तो चलिए श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं तुलसीदास ने कहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमिल बोलिए नदी नाव संजोग। इसका अर्थ है कि संसार में तरह तरह के लोग हैं, आप सबसे हंस कर बोलो, मिलजुल कर रहो, तो जैसे नाव नदी से संयोग करके पार लगाती है, वैसे ही आप भी इस भाव सागर को पार कर लोगे। जी हाँ श्रोताओं, ये तो बात जो तुलसीदास ने कहा है वो हम अपने हिसाब से अपने विवेक से इसको समझें। और रही बात अगर मानवीय स्वभाव की, है ना, मानवीय स्वभाव की हम बात करें, तो हमारे स्वभाव में एक और इस स्वभाव का एक और रूप है जिसे हमने आज का एक सवाल के रूप में तैयार किया है। इसका उत्तर आपको स्वयं के लिए देना है। बताइए क्या आपको गुस्सा आता है? अगर हाँ तो क्या ये तीव्र होता है या साधारण? और उस गुस्से भरे हालात में जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या गुस्सा उतरने के बाद भी कभी आपने गौर किया है कि उसका प्रभाव आप पर या सामने वाले पर किस तरह हुआ? बताइए क्या कभी इन पहलुओं पर आपने ध्यान दिया?

श्रोताओं, बात करते हैं आज के विचार की, जिसे हमने लिया है स्वामी विवेकानंद के खजाने से। जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने कहा है, आप जोखिम लेने से भयभीत न हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व करते हैं, और अगर हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। श्रोताओं, बात बहुत सही है। बात तो नज़रिए की ही है, आप इस विचार को किस नज़र से देखते हैं। क्योंकि भयभीत अगर हुए तो हार जाएंगे, और अगर जीतना है, नेतृत्व करना है, तो मार्गदर्शन करना ही श्रेयस्कर उत्तम निर्णय होगा। बहरहाल श्रोताओं, बारी है एक संगीतमय ब्रेक की।

0: पटाखों की विशाल रेंज,
1: बालाघाट में एयरगन के अधिकृत विक्रेता,
0: एयरगन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
1: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
0: मोबाइल नंबर 9406788702।
2: मैं निकला ओ गटी लेके।
3: अरे पर कहाँ?
4: वैनगंगा आईटीआई एडमिशन कराने।
3: वैनगंगा आईटीआई ही क्यों?
4: क्योंकि यहाँ की पढ़ाई कैंपस में नौकरी तो पक्की समझो।
3: अच्छा,
4: इतना ही नहीं, प्रदेश के साथ साथ ऑल इंडिया टॉपर भी तो वैनगंगा आईटीआई से ही हैं। विशाल वर्कशॉप, प्रैक्टिकल नॉलेज और छात्रवृत्ति के लिए एक ही नाम, वैनगंगा आईटीआई।
3: प्रवेश प्रारंभ वैनगंगा आईटीआई गर्रा बालाघाट।
5: श्रोताओं, आइए बात करते हैं इतिहास की। आइए देखते हैं क्रम इतिहास में कि 14 मई का इतिहास भारत और विश्व में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा है, किन महान हस्तियों ने जन्म लिया और किन लोगों ने आज इस दुनिया से विदा ली। 1607 में अमेरिका में पहली स्थायी अंग्रेजी बस्ती जेम्स टाउन की स्थापना की गई। 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक का पहला टीका लगाकर चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति की। ४९४१ में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 36,000 यहूदियों को पेरिस में गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा का नामकरण हुआ 1954 में। भारत में पहले इसे हाउस ऑफ द पीपल कहते थे, जिसे बाद में लोकसभा के नाम से जाना गया। अंतर्राष्ट्रीय डॉयलन थॉमस दिवस, अगर आज 14 मई के दिन विशेष की बात करें तो हर साल मई को वेल्श कवि डॉयलन थॉमस की याद में मनाया जाता है। इसी तरह आज 14 मई की बात करते हैं तो आज कई जगह मदर्स डे मनाया जा रहा है। यह दिन अक्सर मई के दूसरे रविवार को आता है, जो हम सभी ने 11 मई को अपनी माताओं के प्रति अपने प्यार विश्वास को जताकर मनाया था। लेकिन विश्व के बहुत सी जगहों पर इसे आज यानी 14 मई को मनाया जा रहा है। पर श्रोताओं, क्या एक दिन अपनी माँ के प्रति अपनी भावनाओं को, आदर को, प्यार को ही जताकर इस मातृशक्ति का कर्ज क्या हम उतार पाएंगे? माँ इस शब्द की गहराई में उतरना बहुत कठिन है। एक दिन में बंध कर या बांध कर हम माँ के प्रति आभार नहीं कर सकते, है ना?

के कदम छूना दुनिया की शान है। हाँ हमको मिला है जो भी ममता का दान है। हाँ बाग लगाती है माँ, फूल खिलाती है माँ।

0: शंकर कलेक्शन बालाघाट अब नई साज सज्जा के साथ आपके लिए लेकर आया है पारंपरिक परिधानों की विशाल श्रृंखला नई नई वैरायटी के साथ,
1: जहां आप पाएंगे मेंस वेयर की नई रेंज, दूल्हे के लिए नई नई शेरवानी, बारातियों के लिए पेंट शर्ट ब्लेजर और कुर्ते पैजामे,
0: दुल्हन के लिए नई नई वैरायटी की फैशनेबल साड़ियाँ, लाचा और चुन्नी, सब कुछ नया नया। शंकर कलेक्शन, स्टेट बैंक के सामने, मेन रोड, बालाघाट।
2: श्रोता, हम बात कर रहे थे इतिहास की, तो आइए एक नजर आज के दिन जन्मे लोगों पर और उन पर भी जिन्होंने 14 मई को इस संसार से विदा ली, उस पर डालते हैं। 1610 में फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ की हत्या कर दी गई थी। 1657 में संभाजी राजे, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उनके उत्तराधिकार थे, इनका जन्म हुआ आज ही के दिन 1657 को। 1984 में फेसबुक के जनक मार्क एल्मेट जकरबर्ग का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था, 14 मई को। 1892 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता अरुण चंद्र गुहा का जन्म हुआ। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक मृणाल सेन का जन्म भी 14 मई 1923 को हुआ। वृंदा करंदीकर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि थे, इन्होंने आज अंतिम सांस ली थी 2010 में। आचार्य रघुवीर महान भाषाविद, विद्वान और भारतीय धरोहर के मनीषी थे, इनका भी निधन हुआ था 14 मई 2011 को। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म का निधन भी हुआ 1978 में 14 मई को। श्रोताओं, ये था आज का इतिहास, बारी एक गीत की।

श्रोताओं लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु पंजीकृत आवेदकों से आमंत्रण पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए पोस्ट पर कार्य करने के लिए आवेदकों को प्रोफाइल अपडेट व दस्तावेज पर संकुल प्राचार्य से पोर्टल पर ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन 2 मई से शुरू हो चुके हैं। चयन प्रक्रिया मेरिट आधार पर होगी। इन पदों के लिए डोमिसाइल सीट 100% हैं। दूसरे राज्य वालों के लिए ये आवेदन नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट है www.mp.government.in। इस वेबसाइट पर इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का नमस्कार बालाघाट, जिसे लेकर आज आपके साथ थी मैं, आपकी रेडियो मित्र रश्मि। तो श्रोताओं, गर्मी का मौसम है, इसका विशेष ध्यान रखें, प्यासे जानवरों के लिए पानी पहुंचाने का प्रयास करें, आप स्वयं भी अपना ध्यान रखें, धूप से बचें, अपने परिवार का, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गर्मी के मौसम में खुद को हाइड्रेट रखें और हल्के

नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट।

ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। कृपया करें इंतज़ार।

तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का नमस्कार बालाघाट। इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ मैं आपकी रेडियो मित्र रश्मि। स्वीकार करें मेरा नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में

0: विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू

0: करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
1: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
4: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
5: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
6: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग

0: ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़ाकर 2,441 रुपये किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में

0: लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे थे समाचार प्रभात। FM बैंड 101.3 MHz पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए। श्रोताओं, समय हुआ है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की गाई चंद गज़लें। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत हरिहरन की गाई इस गज़ल से।

तो आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। लीजिए एक बार फिर सुनिए हरिहरन की गाई ये गजल, जिसे लिखी है जफर कलीम ने।

0: श्रोताओं, हरिहरन की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से, अब सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम वतन का राग।
1: कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है विनायक नारायण देशपांडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, प्रतापगंज दिल्ली से सुब्बा लक्ष्मी और जबलपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मनोहर लाल खूबचंदानी। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

19वीं शताब्दी का अंतिम दशक, जब भारत भूमि एक मौन ज्वालामुखी की तरह थी, ऊपर से चुप लेकिन भीतर धधकती हुई, एक सुलगता हुआ समय कि जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने एक अत्यंत संवेदनशील और उग्र मोड़ ले लिया था। इस कालखंड में दो स्पष्ट धाराएं उभर रही थीं। एक का रवैया नर्म था, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सुधारात्मक मार्ग था ये, और दूसरा रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। इसके अग्रदूत थे चाफेकर बंधु और उनके अत्यंत निष्ठावान सहयोगी महादेव विनायक रानाडे, जो एक क्रांतिकारी छात्र थे तथा मात्र 20 वर्ष की आयु में भारत भूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वतन का राग कार्यक्रम में आज एक आत्मीय स्मरण इन्हीं महादेव विनायक रानाडे का। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद पुणे का ब्राह्मण समुदाय, विशेषकर चित्पावन ब्राह्मण समुदाय, अपनी राजनीतिक शक्ति खो चुका था, लेकिन उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना अब भी अत्यंत तेज थी। 1870 के दशक में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने महाराष्ट्र के युवाओं के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। 1890 के दशक में पुणे वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। एक ओर सुधारवादी गुट सक्रिय था तो दूसरी ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहे थे। ये विचारधारा स्वधर्म और स्वराज की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष को आवश्यक मानती थी। महादेव विनायक रानाडे इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के गर्भ से निकले एक महान योद्धा थे।

उनका जन्म सन 1878-79 के आसपास एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक रानाडे एक साधारण किंतु संस्कारवान व्यक्ति थे। महादेव विनायक रानाडे अपनी शिक्षा के दौरान ही पुणे के उस क्रांतिकारी प्रभाव में आ गए थे जो पुणे की तत्कालीन ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पनप रहा था। युवा महादेव विनायक रानाडे की आंखों में अपने जीवन को लेकर कोमल स्वप्न नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में भारत की आजादी का संकल्प था। यही कारण है कि शिक्षा के साथ साथ उनका मन क्रांति की ओर झुकने लगा था।

महादेव विनायक रानाडे के क्रांतिकारी जीवन की औपचारिक शुरुआत हिंदू धर्म संरक्षण सभा के माध्यम से हुई थी। इस संगठन की स्थापना सन 1893-94 में चाफेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू परंपराओं, संस्कृति और मंदिरों की रक्षा करना था। ये संगठन सार्वजनिक रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता था, लेकिन गुप्त रूप से इसमें युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। संगठन की सदस्यता अत्यंत कठोर नियमों के तहत प्राप्त की जाती थी। गीता और तलवार पर हाथ रखकर क्रांतिकारी शपथ लेते थे। ये शपथ केवल शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का व्रत था जिसका पालन वो हर हाल में करते थे। इस संगठन के प्रारंभिक और सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे महादेव विनायक रानाडे। वो न केवल शारीरिक प्रशिक्षण में अग्रणी थे, बल्कि चाफेकर बंधुओं के बीच एक सेतु की भांति कार्य किया करते थे। ये मिलकर जैसे एक ही लक्ष्य के चार स्तंभ थे। इनकी गतिविधियां केवल शस्त्र तक सीमित नहीं थीं, ये जन जागरण का कार्य भी करते थे। संस्था शिवाजी महाराज और गणपति उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी। इसके साथ ही धर्मांतरण का भी विरोध करती थी। ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानते हुए उनका विरोध करती थी। महादेव विनायक रानाडे का युवा मन केवल आक्रोश से नहीं भरा था, बल्कि वो प्रतिशोध की ज्वाला भी बन चुका था। उनके जीवन का लक्ष्य था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इसी बीच एक महामारी ने ब्रिटिश राज का अत्यंत क्रूर चेहरा जनता के सामने रख दिया। सन 1896 में पुणे में प्लेग फैला। धीरे धीरे इसने एक महामारी का रूप ले लिया। फरवरी 1897 में ब्रिटिश सरकार ने विशेष प्लेग समिति का गठन किया। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी W.C. रेंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया। रेंड का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में था। उसका रवैया अत्यंत संवेदनहीन रहा। रेंड ने प्लेग नियंत्रण के लिए डॉक्टर्स के स्थान पर 800 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को पुणे की गलियों में उतार दिया। इन सैनिकों ने प्लेग की जांच के नाम पर जो कार्रवाई की वो अत्यंत घृणित थी। ये सैनिक आधी रात को लोगों के घर में घुस जाते और घर के सामान को नष्ट कर देते। ये सैनिक पूजा घरों में भी घुस जाते, पूजा स्थान को अपवित्र करते, धार्मिक प्रतीकों का तिरस्कार करते, मूर्तियों को तोड़ते और उन्हें अपमानित करने का कृत्य करते। प्लेग जांच के नाम पर सैनिक महिलाओं को निर्वस्त्र करवाते और उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाता। लोगों को शिविरों में भेज दिया जाता और अत्यंत अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इन घटनाओं ने महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी।

प्लेग नियंत्रण के बहाने रैंड के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी बुलंद स्वर में आलोचना की। महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं ने रैंड को अत्याचारी और धर्म का शत्रु घोषित कर दिया तथा उसे समाप्त करने की योजना बनाई। 22 जून सन 1897 को रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर पुणे के गवर्नमेंट हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें रैंड को भी शामिल होना था। क्रांतिकारियों ने रैंड की हत्या के लिए इसी दिन को चुना। क्रांतिकारियों ने सारी आवश्यक जानकारियां जुटाईं। वासुदेव हरि चाफेकर ने रैंड की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। महादेव विनायक रानाडे ने प्रमुख सहायक, क्रियान्वयनकर्ता और निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। 22 जून को सभी क्रांतिकारी नियत समय और स्थान पर अपने अपने दायित्वों के साथ तैनात हो गए। जैसे ही रैंड की बग्घी निकली, दामोदर चाफेकर ने संकेत दिया। वो बग्घी के पीछे दौड़ने लगे और बग्घी के पर्दे हटाकर रैंड के सिर पर गोली मार दी। रैंड गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में 3 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। रैंड की बग्घी के ठीक पीछे उसके सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आरिस्ट की बग्घी भी थी। बालकृष्ण चाफेकर ने उस पर गोली चलाई और वो घटनास्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। महादेव विनायक रानाडे हथियार बंद होकर निगरानी करते हुए वहां मौजूद थे। उन्होंने रैंड और आयर्स्ट की हत्या में सक्रिय सहयोग दिया। अंधेरे और उत्सव के शोर का लाभ उठाते हुए क्रांतिकारी वहां से सुरक्षित निकल गए। इसे 1857 के बाद भारतीय उग्र राष्ट्रवाद की पहली बड़ी घटना के रूप में देखा गया। ये घटना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक जबरदस्त झटका थी। ब्रिटिश प्रशासन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया तथा पुणे में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू की, लेकिन क्रांतिकारी अब तक पकड़े नहीं गए थे। इसी बीच द्रविड़ बंधु गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र शंकर द्रविड़, जो पहले

से ही चापेकर बंधुओं के साथ थे, उन्होंने 20,000 रुपए के लालच में पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसी आधार पर दामोदर हरि चापेकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म के अपमान और मूर्तियों को तोड़े जाने का बदला लेने के लिए उन्होंने रैंड की हत्या की। 18 अप्रैल सन 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। बालकृष्ण हरि चापेकर कुछ समय तक फरार रहे, लेकिन अंततः 1899 में वो भी पकड़े गए। द्रविड़ बंधुओं के विश्वासघात ने महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चापेकर को क्रोध से भर दिया। 9 फरवरी सन 1899 को महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चापेकर ने खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों को समाप्त कर दिया। उसी रात उन्होंने पुलिस के एक प्रमुख मुखबिर और एजेंट रामा पांडू को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला। महादेव विनायक रानाडे ने मुकदमे के दौरान जो साहस दिखाया वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने अपनी याचिका में खुलासा किया कि पुलिस ने उन पर अमानवीय अत्याचार किए। पुलिस चाहती थी कि वो स्वीकार करें कि रैंड की हत्या के पीछे तिलक जी का हाथ है, लेकिन अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद उन्होंने तिलक जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का नाम नहीं लिया। मुकदमे का फैसला आया। किशोर क्रांतिकारी खांडो विष्णु साठे को 10 वर्ष कारावास की सजा दी गई और शेष तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 मई सन 1899 को वासुदेव हरि चापेकर को, 10 मई को महादेव विनायक रानाडे को और 12 मई को बालकृष्ण हरि चापेकर को पुणे की यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से देश के करोड़ों किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल हुई बैठक में

0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: दंगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अरिजीत सिंह की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और राम लक्ष्मण की आवाजें हैं, देव कोहली के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।

निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या का आज जन्मदिवस है। जन्मदिवस पर उन्हें विनम्र नमन। उनकी बैनर तले बनी फिल्मों में मैंने प्यार किया, प्रेम रतन धन पायो, हम आपके हैं कौन, विवाह जैसे सुंदर सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने परिवारों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। आज का आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या पर। प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल के।

इरशाद कामिल के बोल आपने सुने, हिमेश रेशमिया का संगीत था। ये गीत आप सुन रहे थे प्रेम रतन धन पायो फिल्म से।

तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम एक था टाइगर।

तरन्नुम मलिक मोहित चौहान की आवाज़ों में एक था टाइगर फिल्म का गीत। आप सुन रहे थे, मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब फिर वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए।

ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत, और आपको अब सुनवा रहे हैं बॉर्डर टू फिल्म का ये गाना। विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की ये आवाज़ें।

विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजों में बॉर्डर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि सुबह 6:45 पर और शाम 6:45 पर आप सुनते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम। आज सुनिएगा श्रृंखला शाम 6:45 पर, श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी आज। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम आज सुनेंगे। इसके अंतर्गत गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रीकर की बातचीत सुनेगा भाग दूसरा होगा आज। प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। अब चित्रलोक कार्यक्रम में ये गाना, ये बनवास फिल्म का गाना है। नाना पाटेकर शान और मोंटी शर्मा की ये आवाज़ है।

0: वनवास फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नाना पाटेकर, शान और मोंटी शर्मा की आवाजें थी। सुनील शिव का ये गीत लिखा हुआ था और मोंटी शर्मा का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

fire. Mekali se na kare tu kare jab dekhe hame jhoothi liar. काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे. अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में.

बार बार देखो फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अमर आशी और साथियों की आवाजों में जैस्लीन रॉयल का ये संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी।

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत, इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चित्चोर, 1980 की एक बार कहूं, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAH के यानी हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई यह फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की धूम रही।

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या अपने

परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शंस, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई और छा

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं, जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी।

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अक्खियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म, ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.3 MHz पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।

के प्रति माह के मान से 1,48,200 रुपये की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की। विगत दिनों केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली और उसकी अध्यक्षता करते हुए जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। श्री सिंधिया जिले की मुंगावली, बहादुरपुर, चंदेरी, पिपरई तहसीलों में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। उन्होंने अशोकनगर पिपरई मार्ग पर नदी पर नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के निर्माण से मुंगावली पिपरई से अशोकनगर जाने में नागरिकों को 12 माह निर्बाध यातायात उपलब्ध होगा। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दोपहर में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही काफी कम रही। तेज लू चलने के कारण लोग खुद को कपड़ों से ढककर यात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने बीते दिनों जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. केपी यादव ने जिले का दौरा कर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्यों की समीक्षा की और उपार्जन केंद्रों पर किसानों को उपलब्ध सुविधाएं, बारदाने की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था, भंडारण और किसानों को भुगतान समय सीमा में कराने के निर्देश दिए। वहीं आयुक्त दिव्यांगजन मध्य प्रदेश अजय खेमरिया ने जिले के प्रवास के दौरान जेल में आयोजित बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में चिन्हित 7 बंदी दिव्यांगजनों को जीवन सहायक उपकरण वितरित किए। संभागायुक्त ग्वालियर मनोज खत्री ने जिले की नवीन कृषि उपज मंडी और एक निजी वेयर हाउस स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया और उपार्जन कार्यों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वसहायता समूह की महिलाओं को 10 जेंडर मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच लैंगिक समानता, उनके अधिकारों और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है। जिले में जनगणना का कार्य जोरों पर है। विगत दिनों जिले में स्वगणना कार्यक्रम संचालित किया गया। जनगणना की अगली प्रक्रिया के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर साकेत मालवी ने नगरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर अपने समकक्ष जनगणना का कार्य प्रारंभ करवाया। अशोकनगर जिले में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कैंप की शुरुआत फिटनेस जागरूकता रैली के साथ की गई। जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत ग्राम सहराई में बेलन नदी का गहरीकरण कार्य किया गया। इसी के अंतर्गत अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने ग्राम पंचायत सहराई में ग्रामीणों के साथ श्रमदान किया। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने विगत दिनों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुपयोगी व खुले बोरवेल को तुरंत बंद कराए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि लापरवाही पाए जाने पर भूस्वामी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर जिले में किसानों द्वारा नरवाई जलाई जा रही है, जिसको लेकर विगत दिनों पीपरई क्षेत्र के बेसरा गांव के पास खेतों की नरवाई में लगी आग की चपेट में आने से 4 बाइक सवार झुलस गए। अशोकनगर कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसका उल्लंघन करने वाले 7 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। जिले में विगत दिनों पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है। शुभारंभ अवसर पर अशोकनगर जिले की पर्यटन नगरी चंदेरी स्थित किला कोठी हेलीपैड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के अंतर्गत नए सेक्टर भोपाल चंदेरी ओरछा के लिए हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वहीं अशोकनगर में विगत दिनों अक्षय तृतीया पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 117 नवविवाहित जोड़ों ने नए जीवन की शुरुआत की। सम्मेलन में जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अशोकनगर जिले में आगामी खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी शुरू हो गई है। कलेक्टर साकेत मालवी ने बताया कि जिले में वर्तमान स्थिति में लगभग 6.40 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.57 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 3.46 लाख मीट्रिक टन एनपीके, इसी प्रकार 5.13 लाख मीट्रिक टन डीएपी एनपीके और 3.50 लाख मीट्रिक टन एसएसपी खाद उपलब्ध है। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज कुमार शुक्ल, वाचन स्वर शरद बाघेला। अशोकनगर जिले के 24,667 हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 600 रुपए

श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। सुबह के 10:05 हुए और श्रोताओं, समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म खामोशी के इस गीत से, जिसे गाया है अलका याग्निक और हरिहरन ने। गीत है मजरू के, धुन तैयार की है जतिन ललित ने। तो

देवदास फिल्म का गीत, आवाज़ें श्रेया घोषाल और उदित नारायण की, गीत हैं नुसरत बद्र के और संगीत है स्माइल दरबार का। तो लीजिए सुनिए फिल्म देवदास फिल्म से ये गीत।

श्रोताओ, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है चलते चलते, आवाज़ है उदित नारायण अलका याग्निक की, बोल हैं जावेद अख्तर की और धुन तैयार की है जतिन ललित ने। तो लीजिए सुनिए फिल्म चलते चलते फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं लीजिए सुनिए। श्रोताओं अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हिना का ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत और संगीत है रविंद्र जैन की। तो लीजिए सुनिए फिल्म हिना का ये गीत।

श्रोताओं, लता मंगेशकर के गाए इस मधुर गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.3 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
0: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
0: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
0: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
0: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
0: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
0: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
0: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
0: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
0: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
0: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है, और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
0: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
0: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
3: घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
4: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
3: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
4: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
5: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
6: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
7: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
8: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेंढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक,

0: अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
3: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।

0: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
1: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
0: आजा खेलते हैं।
1: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
2: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
1: अच्छा वो क्या?
2: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
1: हाँ
3: दूसरा क्या?
2: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
0: क्या बात कही है।

सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: और मुश्किल। बिल्कुल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ। आगे हो, आगे हो। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
5: Ah!
3: लाल, उधर से दुश्मन आ रहे हैं, फायरिंग।

0: मैंने यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैनगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे।
0: अभी बोला चाहता हूँ मैं।

0: उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
2: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
2: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी।
0: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: Tarán.
1: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। मैं हूं विधि प्रवीण जैन। नमस्कार।

हम सुन रहे थे मनमस्त कबीरा एल्बम से बैजू मंगेशकर की आवाज़ में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए, कबीर के द्वारा लिखे गए इन प्यारे से बोलों को। आइए चलते हैं, सुनते हैं अगला नगमा आज के कार्यक्रम रंग तरंग में। ये सुंदर सा नगमा लिया है हमने कागा एल्बम से, मिर्जा डेयर टू लव इस एल्बम का नाम है। कौशिकी चक्रवर्ती ने इसे गाया है, गुलजार ने इसे लिखा है और शंकर एहसान लॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

द खजाना कॉन्सर्ट अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए इस प्यारे से नगमे को हम सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, बड़ा खूबसूरत सा है, जिसे लिया गया है यूनिक जगजीत सिंह एल्बम से, जिसे जगजीत सिंह ने गाया है और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया है, सहरी भोपाली ने इसे लिखा है।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एहसास एल्बम से तलत अजीज के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए सईद राही के द्वारा लिखे गए इस प्यारे से नज्म को, और सुनते हैं ये प्यारी सी नज्म।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, अनफॉरगेटेबल ट्रीट, आशा भोसले एल्बम से। आशा भोसले की आवाज में फानी बदायूनी ने इसे लिखा और जयदेव ने इसे संगीतबद्ध किया।

हम सुन रहे थे एल्बम प्यार प्यार का पहला खत से ये नगमा, जगजीत सिंह की आवाज़ में, जगजीत सिंह के ही संगीत के साथ। इसे लिखा है हस्ती ने।

0: हम सुन रहे थे गुलदस्ता अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए अमीर हनीफ के बोलों को। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
3: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त

0: अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्यवर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए याद करते हैं राजकुमार बड़जात्या, जो कि निर्माता निर्देशक रहे, उन्हीं की फिल्मों में से चुनिंदा कुछ गीतों को सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में।

इसी लाइफ में इस फिल्म से हम सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में मनोज मुंतशिर के बोल और मीत रोजन जान के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में, जो कि है हम साथ साथ हैं फिल्म से। हरिहरन, घनश्याम वासवानी, प्रीतम राव, संतोष तिवारी की आवाज में, जिसे रविंद्र वाल ने लिखा है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या को। तो आइए सुनते हैं उनके ही द्वारा रची गई फिल्मों में से फिल्मों के गीत। अगला गीत होगा चितचोर फिल्म से, यशुदास की आवाज में रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के ही संगीत के साथ।

0: सौदागर फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आइए सुनते हैं बहुत सुंदर सा नगमा अगली गी फिल्म के साथ में, जिसे निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या जी के द्वारा बनाया गया है। ये है प्रेम रतन धन पायो फिल्म से। अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब सबरी और साथियों की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत, हम आपके हैं कौन फिल्म से, लता मंगेशकर, बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में, रविंद्र अवाल के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। बड़ी खूबसूरती से हमने सजाया है इसे सुंदर गीतों के साथ में। राजकुमार बड़जात्या के द्वारा बनाई गई फिल्मों के गीतों को हम सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनेंगे पिया का घर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

विवाह फिल्म का यह गीत उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज में रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के संगीत के साथ हम सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल में। और इसी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं एक और बहुत खूबसूरत सा नगमा जिसे गाया है शान ने और श्रेया घोषाल ने रविंद्र जैन के बोल और उनके ही संगीत के साथ, एक विवाह ऐसा भी इस फिल्म से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा थोड़ी ही देर के बाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन, और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा हो क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर। कि हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे, और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पैर बहुत हसीन हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में तारीफ भी एक कला होती है, लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सीधी कहाँ है। कभी तो ये चाकू सी है, हाथ कट जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूं कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने अपने हौसले गिनकर बता देती हूं। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हर हाल में खुश हैं। मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जहां खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीतते जाते हैं पर डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है, बाबू मशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी तो रस्सी भी है। अपनों की याद में आंसू बहने नहीं देते, क्योंकि कोई ये ना कह दे कि सुनो आई हेट टीयर्स, पर जीवन की दौड़ अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर कहाँ खत्म हुई है अभी। तो ये जो पिक्चर है वो शुरू हो चुकी है।

0: बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं और कई लोग संदेश भेज रहे हैं, उसकी कतार बड़ी है, बड़ी लंबी सी कतार हमारे बीच में है। तो हमारे जो श्रोताओं ने बहुत सारे गाने भी आपने चुने हैं और सच बताऊं तो कई गीत ऐसे हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से जो हमने बनाई है आपके लिए उससे मिल रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल हैं। अब ऐसे दृश्यों में जो कलाकार दिख रहे हैं उन पर गीत होंगे, या ये डायलॉग इबारत को पूरा करने के उद्देश्य से डाला गया है, या इन डायलॉग्स में जो शब्द हैं उनको आधार बनाकर गीतों को प्रस्तुत होगा। अब ये बात वो समझ नहीं पा रहे, उनका कहना है कि बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ नए तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं, फिल्म के संवाद गीतों का सफर लगता है और साथ साथ चलेगा तो क्या होता है। देखिए, सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की, बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर वह तो अनुभव करना होता है, भोजन में नमक की तरह जो दिखाई नहीं देता पर होता है। कितनी बढ़िया गंभीर बात हमारे श्रोता ने लिखी है। और हमारे श्रोता ने एक बात लिखी है कि आज की भारत केवल फिल्मी संवादों का संग्रह नहीं है, बल्कि सिनेमा के चश्मे से जीवन को देखने का एक खूबसूरत नजरिया है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि जीवन की कहानी का सुखांत होना अभी बाकी है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है आज की भारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन फिल्मों के डायलॉग शामिल किए गए हैं उन्हीं फिल्मों के गाने शायद बज सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने जिन फिल्मों के संवादों को पहचाना उनके नाम है दो बदन, डॉन, पाकीज़ा, वक्त, शोले, दामनी, खाली अमर, प्रेम, आनंद, मेरे महबूब। हो सकता है और भी कुछ फिल्मों के डायलॉग हों, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, जितना आपने पहचाना उतना अच्छा है। कितनी बढ़िया बात है कि आप पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं आज की इबारत पर यह शब्द हो सकते हैं मोहब्बत, डॉन, हसीन, पैर, तारीफ, बहुत सारे शब्दों का इन्होंने जिक्र किया है। और वो लिखते हैं कि मोहब्बत की तारीफों का अजीब असर होता है, कभी मुस्कान दे जाती हैं, कभी दिल भी असर होता है, कुछ जज्बात आंखों तक आकर ठहर जाते हैं और कुछ आंसू बनकर बिना बहे ही दिल में उतर जाते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, सही बात है, क्यों करते हैं पता नहीं। पर हमारे श्रोता लिखते हैं इबारत के अनुरूप संभावित गाने हैं मैं हूं डॉन, और उन्होंने कई सारे गानों के बारे में लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से क्या हो सकता है। हाँ, आपने एक बात तो बहुत अच्छी पकड़ी, हमारे एक श्रोता ने तो 15-20 गाने भेज दिए हैं चुनकर, कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी मेहनत की होगी, उसके लिए आपको धन्यवाद है। हमारे श्रोता लिखते हैं हम जहाँ से खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आज इबारत में मुझे फिल्म डॉन फिल्म नजर आ रही है। अच्छा, आपकी पसंद भी आपने हमको बता दी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यह भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि हमसे हमारे इश्क का अंदाज पूछ रहे हैं और हमने भी हंसकर कह दिया रिश्तों में तुम्हारे बाप लगते हैं। तभी पलट कर उन्होंने सादगी से कहा थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। उस पल समझ में आया मोहब्बत में तकरार भी एक अलग सुकून देती है, मगर इस दिल की दहलीज का कदम रखना इतना आसान नहीं है। यहां कभी जज्बात कांच की तरह चुभते हैं, कभी खामोशी भी जान ले लेती है। क्या खूबसूरत बातें आपने लिखी हैं। और जब इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे उसी इबारत की तरफ, और हमने सबसे पहले लिखा है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कह दिया डॉन को पकड़ना डॉन पकड़ में नहीं आता, और इसी इबारत से अगर हम समझ लें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये गीत यहाँ पर होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। ये तो मैं मेरी पसंद से आपको एक गीत सुनवा दूंगी और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं इनमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसे बहुतायत में आप प्रयोग किया करते हैं। जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा, ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग आप बहुत बार करते हैं और लोग उस बात पर आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं। तो जल्दी से ये बात हमें बताएं। और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक एक अलग अलग बातें लिखी हुई हैं डायलॉग्स के बारे में लिखा है। तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सा सुनते हैं, और अगर आपकी पसंद का है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है,
2: बताए दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी किधर भागे कभी किधर भागे। अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने मुँह ही जल गया है।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा। आहा अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला।

ये गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से। इसके पहले भी हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी। ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ अनजान फिल्म। अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीत।

0: दोस्तों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में। तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद हैं या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं, और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे। और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है कि आपके पाँव बहुत हसीन है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ डॉन, जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफर का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आई हेट टियर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है, और हमारी फ्रेंड हम हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स, मतलब मैं जी हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे, मर जावा गुड़ खा के। हाँ ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के, गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियाँ होती हैं, ये बात भी, ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहाँ से चाहो तो भी वापस ना आ सको, यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझा कर कहा था। ये भी बात सही है। और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद हैं। अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर। और सुरीले सफर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ, वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जेहन में, मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बस गए हैं और बस ऐसे गए हैं कि चाहे जब चाहे में ही निकल आते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफ़र इसमें चल रहे हैं और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों के कालजयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति एक दार्शनिक और बेबाक अभिव्यक्ति है। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है पर भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती है। यह हार ना मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और

हमारे श्रोता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारे एक मेडिकल स्टोर की शॉप है, जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग आओ ठाकुर ऐसा बोल देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे शब्दों से ही अगर किसी के जीवन में खुशियाँ आ जाएँ तो क्या कहना है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, कितने आदमी थे, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला महलों के ख्वाब देखने, ये सारी बातें हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं कुछ फिल्मी संवाद को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, जिनमें एक संवाद है, तुमने सपने देखे हैं सपनों को टूटते नहीं देखा, दूसरा है जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते, और तीसरा है मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं साला ये तो काहे को खत्म नहीं होता। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना पकाते हुए भी LPG खत्म हो जाए तो भी यह डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये जो अगला गीत है ना, इसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत में तारीफ नमक के माफिक होनी चाहिए, जरूरी भी है और जरूरत से ज्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती अहमियत का एहसास दिलाती है। हम अक्सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते, पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नजर से देखने लग जाते हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले, तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती, बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन हैं, ये राजकुमार जी का, जरा बताइएगा। आपके पैर बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिए मैले हो जाएंगे, ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलान हो रहा हो, बताइएगा। अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो ज़रूर हमें सूचना दीजिएगा और इतना सब बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है, और साथ में ये बताइएगा जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है, और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शिक्षक ने, कभी माँ ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हो जहां पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी, जरूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, बताइएगा इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं से कहाँ क्या छुपा है। बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफ़ी आज़मी ने इस गीत को बोल दिए हैं। और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के जरिए विविध भारती के स्टूडियो से। आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है।

चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं शबे आखिरी, शबे इंतजार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलती जलती। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारी श्रोता लिखती हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते खाते हंसने लगते हैं। तो हमारी श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डांट को ना, कभी दर्द नहीं होता। तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और वो और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं। इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफर में डायलॉग की बात हो रही है, तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे हैं। चल तनु बसंती आज, चल धनो, यहाँ तनु नहीं, यहाँ धनो होना चाहिए। चल धनो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा क्या नाम है बसंती? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा था। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। आओ महारथी आओ, ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफर के साथ, सफर यानी डबल सफर करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफर के साथ साथ ट्रेन के सफर का भी आनंद ले रहे हैं। आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा, तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए, और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात को ही प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोधड़ी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सबकी शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है ये सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सबकी हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए, और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है, और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी, और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफ़र चल रहा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगी, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में

बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे ये डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबू जी कहाँ जाओगे बेलापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे हैं उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड वाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिएगा, और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की ये फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए, हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफर में जुड़कर मोगैम्बो खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे, तो जरूर भेजिएगा। मौसी जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं क्या? आप सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है। प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनों की इज्जत का सवाल है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका ये हाथ दे दे, क्या था सही डायलॉग आप जरा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोल आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो धोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा एट ईयर्स मोगैम्बो खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया, मेरा नाम सूरमा भूपाली ऐसे ही नहीं है। अरे वो सांभा कितने आदमी थे, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब, गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है दो जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है, और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली। ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है, और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंती इनके सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है, कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी, कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं। और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं, और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है, और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने जमाने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या, यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मज़ा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहाँ रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग्स जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए, ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए, और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं, बस यही करना है कि उस गीत के गायक

को पहचान लेना है और जरा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है। डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से, तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और उसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं और खाली आ कितने आदमी थे ये डायलॉग भी हमारे श्रोता ने दिया है। और इसके साथ मैं आपको अलग अलग गीतों की कई सारी बातें बनाऊंगी, तो एक डायलॉग मैंने लिया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसके वह गीत है इस फिल्म ओम शांति ओम से। और उसके साथ ही हम एक और बड़ा प्यारा सा

आंखों में अदाएं भी हैं और एक और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है जो कि है फिल्म कालिया। तो सुनते हैं ये थोड़ा सा नगमा।

और अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाह ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी, ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गीत हम सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी। उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली, मौत तो एक कविता है, मुझाए मुझसे एक कविता का वादा है। वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है, जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में किसकी डोर कट जाए ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन में कार्यक्रम

दर्शन पर देखी थी। और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में कार्यक्रम सुरीला सफर में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है रंग पर। साथियों, इस संसार में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो उसका अपना रंग नहीं है, हम बस परावर्तित प्रकाश के रंग को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि घास हरी है, लेकिन घास हरी नहीं है, ये हरे रंग के प्रकाश को लौटा रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें हरी घास नजर आती है। आकाश नीला है? नहीं, आकाश नीला नहीं है। हमें ये पता है कि अंतरिक्ष तो नीला अंधेरा है, वहां नीला जैसा कुछ भी नहीं है। आकाश अगर नीला नजर आता है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। नीले रंग का अपवर्तन गुण बाकी रंगों से बिल्कुल अलग है, इसी वजह से आकाश नीला है।

संसार में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष, पूरा संसार रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को भी हम देखते हैं वो सभी रंगहीन है। रंग तो केवल प्रकाश में होता है, रोशनी में होता है। रंग वो नहीं है जो वो दिखता है, बल्कि वो है जो वो त्यागता है। जो भी रंग बिखेरते हैं वही हमारा रंग हो जाता है। हम जो अपने पास रख लेंगे वो हमारा रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारा गुण हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व हो जाता है।

करते हैं, यानी हम पारदर्शी हो गए हैं। अगर हम पारदर्शी हो गए हैं तो हमारे पीछे की कोई चीज अगर लाल है तो हम भी लाल हो जाते हैं। अगर हमारे पीछे मौजूद कोई चीज नीली है तो हम भी नीले हो जाते हैं। हम जहां भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज में फंसते बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि हम पारदर्शी हैं। और वो रंग एक पल के लिए भी हमसे चिपकता नहीं है। हम शांत, संतुष्ट, उत्साही और जिज्ञासु रहते हैं।

जो रंगों से परे है वो रंगहीन नहीं है, वो पारदर्शी है, वैराग्य है, जिसका मतलब है कि हम ना तो कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित।

के टोंक कला गांव में मौजूद पटाखा फैक्ट्री में आज भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई। हादसे में दो मजदूरों की मौत हुई है और करीब दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। संभाग आयुक्त और कलेक्टर मौके पर हैं और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले एक साल से उच्च स्तरीय संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। इस साल जनवरी में शेख मोहम्मद भारत आए थे। ये एक दशक में उनकी 5वीं भारत यात्रा थी। तब दोनों नेताओं ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये यात्रा दोनों देशों की दोस्ती को और नए स्तर पर ले जाने की कोशिश है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में श्री जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है और हाल के संघर्षों ने कूटनीति की अहमियत को और साबित किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। पेयजल व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन, नए एयरपोर्ट और अग्निवीर आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ग्रामीण इलाकों में जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री और ITI को रोजगार से जोड़ने पर भी बात होगी। सरकार देखेगी कि योजनाएं जमीन पर कितनी उतरी हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहमा के साथ मिलकर मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की। करीब 190 करोड़ रुपए की यह योजना अदरक की खेती और उसकी वैल्यू चेन विकास के लिए शुरू की गई है। इस मिशन में कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों के साथ साथ नाबार्ड, ICAR और एपेडा भी मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को विमानन क्षेत्र में नेशनल मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी साझा किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। ये बदलाव CUET UG 2026 की परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई जारी है। कल चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने आरक्षण बढ़ाने का विरोध कर रहे पक्ष की दलीलें सुनी थी। आज दोपहर 3 बजे अगली सुनवाई होगी। बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खजुराहो में पारा 45.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं रतलाम में 45.2 और धार में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उज्जैन, इंदौर और भोपाल में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 17 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा उन्नत तकनीक अपनाने वाले किसानों से उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अशोकनगर जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूहों की महिलाओं को 10 जेंडर मॉड्यूल्स पर प्रशिक्षण दिया गया। सिवनी जिले में रवि विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य में किसानों की सुविधा के लिए

रोजगार उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में आज युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रायसेन जिले में आज संपर्क अभियान के तहत बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया और आगरमालवा जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
3: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और

0: सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
2: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास

0: किया है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को यह मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शराबी का एक गाना। आवाजें हैं लता आशा भोसले किशोर कुमार और साथियों की। अनजान ने इस गाने को लिखा है। बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इसी गाने को पसंद किया है। छत्तीसगढ़ देवी।

0: हम सुन रहे थे ये गीत 12 o'clock फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की दत्त की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

हम सुन रहे थे ये गीत काला पानी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दाव फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: काफी।
1: हम सुन रहे थे मधुमति फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से, सुरैया शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का है संगीत।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल आपको और साथ में हमारी सारी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, ये तो आज भी वजह बताइए
2: भाई। एक बार जब भी आते हैं ना तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना,
1: हाँ,
2: सेहत का ख्याल है या नहीं।
1: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी,
2: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
1: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही हैं
2: जी, बिल्कुल,
1: वो हमसे साझा कर सकती हैं। लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
2: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है, तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
1: हाँ,
2: है ना।
1: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े, या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स लेकर बताएंगे
2: जी, बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
1: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
2: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किस्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं, तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें।
1: देखो
2: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला, साधारण नहीं।
1: क्या होता है ना, आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किस्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी।
2: बिल्कुल, तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी हैं, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
1: और क्या इसके साथ जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
2: बिल्कुल।

0: और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है, जो
1: हाँ हाँ
0: जहां पर हम KG 1 KG 2 के जब
1: हाँ
0: पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती। तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है? तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में
1: जी,
0: या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
1: एक और दोस्त यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते
0: अरे
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं। कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है।
0: जी
1: वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं,
0: हाँ
1: बस अपने शौक में
0: हाँ
1: वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफर, अगर उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है? बहुत कुछ जानकारी तो
1: भाई
0: है उनके
1: जानकारी
0: बारे
1: बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता
0: में। अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।
1: है।

0: बहुत सुंदर गीत था, और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है, और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना, जब वो चलाती है ना रंग, रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल, कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें, और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है, और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास, कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है। उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है, तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौर, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे, और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो, तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी, कभी घोड़ा, और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी, अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, तो पड़ोस के ही गांव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरी बाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी, और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरी बाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया, तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से, गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
1: जी, उनके पति चले आए।
0: हाँ,
1: पति के साथ
0: वो चली आई, और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहां के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरी बाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरी बाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो

0: दे ही थे, लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा
1: ये
0: गया।
1: उनको कहा, तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया, जिसके लिए उन्हें उस वक्त ₹50 मिले। यहाँ जी
0: भाई उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो ₹50 मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी, और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई, और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है।
1: जी
0: और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और त्योहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी, जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है, तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरीबाई
0: और
1: कह जी भूरीबाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी, जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें साल हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में,
1: जी
0: लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
1: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली महिला हैं जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है, और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हैं। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी, जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरी भाई का ये मानना है कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज़ में आड़े मत आने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अभी गाना सुन लें।
1: चलिए

0: पानी पता है कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सूनी होती भाई। सखी सहेली के रहते
0: जी।
1: आपकी दोपहर कभी सूनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं।
1: जी।
0: और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा।
0: जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही।
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां

0: ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ
1: हाँ,
0: करती थी।
1: दिल से जुड़ जाते
0: और
1: थे।
0: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
1: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं
0: बिल्कुल
1: होती।
0: सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, और दोस्ती यही मांगती भी है। अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो
1: जी
0: तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
1: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
0: चलिए।
2: कहानी बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई है। प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नकद हो गई है। छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान, जब दोस्ती होती है तो।

0: सही होगा, हम पांडव हैं भारत के, जो कहते वो ही होगा। ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम पांडव हैं भारत के, जो कहते वही होगा।
1: जम के एक जमा दूं

का जब तक जोड़ सलामत साथ सलामत छोटी और बड़ी है तो क्या पांचों है तो हाथ सलामत एक एक के है पांच मुकद्दर तकलीफों से घबराना मत साझे जोड़ जवानी बचपन पांच से पांच मिले थे।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा महेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं जी। वो तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं, हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब, सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भाई बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था एक बार के लिए खाना भूल जाते थे, पर सखी सहेली सुनना नहीं भूलते थे।

0: नहीं बोल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखियों और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी
1: जी
0: डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
1: बिल्कुल, अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
0: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
1: हाँ तो भाई चलिए सुनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
1: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
0: चलिए

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर।

0: मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना इनकी कितना आसान ईएमआईज पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा, अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीजें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं, कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीजों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना, आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है, अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
2: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
1: मैं फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना, अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज़ हमारी वापस से मांगी जा रही है या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है सजा भी हो सकती है, उन चीज़ों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है उतनी आमदनी आपको रखनी या तो फिर किश्तों से ही बचना है।
2: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है अरे सिर्फ 2000 या 3000 की किश्त है तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2000 या 3000 दिख रहा है ना महीने का सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना, जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है, बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हजार के नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5

0: 5,000 तक पे चली
1: और वो
0: जाती।
1: जो 20,000 की चीज आपको खरीदनी थी वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है क्योंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी पड़ जाती है और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं और पैसा भी डूब जाता है।
0: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या हैं, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान हैं। जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो सकती है, जीएसटी कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किश्त तो हमें जानी ही है। फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे ईएमआई चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार कि किस्त बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
1: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
0: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप ईएमआई के पक्ष में है तो 10% का नियम अपनाना चाहिए। वो क्या है कि आप सभी ईएमआई का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा दें?
0: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं गर्मी बहुत है,
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है। आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं। और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है, हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
0: जी
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते
0: तो
1: हैं।
0: उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए, क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने।
1: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे। नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं। और एक बार कपड़े, जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना
0: जी
1: पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई हैं कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
0: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें, तो सफेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें। सफेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहां जो प्रभावी हिस्सा है, जहां दुर्गंध ज्यादा आती है पसीने में, वहां रगड़ कर धो लेना है। टमाटर है, इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं, उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबालकर, नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर

0: सकते हैं इसको
1: जी
0: पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
1: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
0: चलिए

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला, लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी, तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है, तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: पूर्व लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं, जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन है। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई, आपकी तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं। और बहुत खूब, आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी, तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
1: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
0: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
1: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहा है, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मड़िया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत
0: अच्छा।
1: दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहंदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैं मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन।

0: हेलो फरमाइश,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो
0: अच्छा।
1: कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे
1: तो
0: ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा
1: मेरा माँ है, पापा है, तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, तो थोड़ा सा देखभाल करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है, माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा,
1: तो यह से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी का आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आज आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का।

0: जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, साजन चले ससुराल मूवी से। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बांग्ली भाषा
1: जी,
0: तो बेंगली रहती है, तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है, हिंदी भाषा सीख जाती है
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
1: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी बहन जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: बताएं जरा अपने
1: बस
0: बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूल वाला काम डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में
1: जी
0: आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं। अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं
0: अच्छा,
1: तो जाते रहे।

0: सकते हैं, और उसमें फल भी लगे हुए हैं।
1: कौन से फल लगाए हैं?
0: अभी आम है और कटहल है।
1: आम कौन सा है, आम की कौन सी जाति?
0: दशहरी है, दशहरी।
1: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
0: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
1: और बताएं, आपके जो शहर है वहाँ के क्या हालचाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
0: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है, और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
1: अच्छा,
0: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
1: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
1: लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
0: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस दो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
0: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
1: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। अरे

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो भी भारती का सुनने वाला हूँ। मैं घाट को ऊपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाटकोपर से बनारस कैसे पहुंच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में।
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है।

0: का, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है। हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय। विविध भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, फेमस है, उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस हो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी तो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ, नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं। अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जवर आल अली जवर आल अली जवर ए अली तो सो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।
2: अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो अजबे।

बरा अलिफ रे अलिफ पेशो अलिफ से अपन अभी नबी हुर मन अपन अबौ वहां पे से बब

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी। मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हाल चाल है?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम
1: जी
0: होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम? कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ।

0: ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
1: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
0: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
1: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
0: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत।
1: जी जी जी जी
0: और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
1: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
0: जी बिल्कुल।
1: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं, या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
0: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
1: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
0: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
1: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
0: इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
1: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
0: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
1: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं, और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है।
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा
1: मुझे बहुत
0: क्यों?
1: खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा
0: हाँ
1: होता है कि आपको मतलब सारी खुशियां मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप से आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप से। और अगर हम कहीं बाहर भी जाएं ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है, पहले सेहतनामा आता था, अभी सेलुलॉइड के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं, खेत से कर रहे हैं क्या?
1: हैं। इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना, तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले, लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मत राज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी। आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था। काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली। तो वो छुट्टी जो है ये हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में?
1: आपकी आवाज सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शिपाल दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है?
1: अमरावती विदर्भ में बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी, और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: उड़ी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
1: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
0: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
1: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
0: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
1: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
0: अभी थोड़ा ठंडा है।
1: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आपका किस चीज का काम है?
0: टेलरिंग वैसा ही है मतलब, सिलाई का।
1: अपनी शॉप है?
0: जमा कोट वगैरह आप... जी भैया की शॉप है।
1: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों, लेडीज जेंट्स?
0: जेंट्स।
1: अच्छा,
0: जेंट्स ओनली।
1: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
0: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
1: क्या बात
0: लेकिन
1: है।
0: लेकिन इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
1: अच्छा,
0: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
1: अच्छा,
0: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है स्थान के अंदर।
1: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हालचाल हैं भाई, इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
0: जी बिल्कुल है मैडम, 12 महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
1: जी जी जी,
0: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
1: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
0: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिक द्वारा सिद्धनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है।
1: जी जी,
0: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
1: अच्छा,
0: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है। ज्योत भी वही वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी और लंगर 12 महीने चालू रहता है।
1: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
0: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, हवस मूवी से। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम।

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर 2 सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून लगाते कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो बंद है।
0: हाँ तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो अब ये बताएं दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हसी रात फिर हो न हो।
0: काल जयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से। हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288 2867-0288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो, फरमाइश।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

0: श्रोताओं, स्वागत है आपका युवाणी के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी है, घर से बाहर निकलने पे बहुत गर्मी का हीट स्ट्रोक लगने की भी संभावना है। तो इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रोहित सचदेवा। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार सर,
0: कैसे हैं?
1: मुझे यहाँ बुलाने के लिए
0: धन्यवाद आपका भी यहाँ आने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी और हीट स्ट्रोक चल रहा है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है?
1: सर, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया है अपने श्रोताओं के लिए, हीट स्ट्रोक। सच में गर्मी तो काफ़ी पड़ रही है,

0: आम जनता को जानकारी आपके थ्रू पहुँचे, ये सबसे अच्छी बात रहेगी। हम अगर बात करें हीट स्ट्रोक की और इस बार की गर्मी की, तो अभी चल रहा है सर मई का महीना, तापमान लगभग 40 डिग्री, 42 डिग्री के आसपास, 44 डिग्री कभी कभी पहुंच रहा है। 4-5 बजे तक दोपहर में अच्छी गर्मी रह रही है, उसके बाद मौसम थोड़ा सा कम ज़्यादा रहता है। हीट स्ट्रोक के बारे में सर आपको मैं बात करूं तो इसे हम हाइपरथर्मिया भी कहते हैं, जिसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है। इसके दो तीन मुख्य वजह होती हैं। सबसे पहले कि बाहर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारा शरीर उस गर्मी को प्रोसेस नहीं कर पा रहा,
1: जी
0: बहुत ज़्यादा हमें या पसीना नहीं आ रहा या हमने पानी नहीं पिया हुआ है, हमारे शरीर में नमक की कमी है, डिहाइड्रेशन हो गया एकदम से, ये एक रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमारे अंदर से ही हमने फिजिकल एक्जर्शन बहुत ज़्यादा कर दिया, अब बॉडी उस हीट को बाहर नहीं निकाल पा रही
1: जी
0: है ना, हमारे रोम छिद्र नहीं खुले, हमारी हीट बाहर नहीं आ पा रही, तो अंदर ही हमारा तापमान थर्मोरेगुलेशन, जो हमारा शरीर का एक सेंटर होता है जो अंदर का तापमान को मेंटेन करता है, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हमारा तापमान काफ़ी शरीर के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुख्य लक्षण जो हमको देखने मिलते हैं वो दिखता है कि हमारी स्किन एकदम रेड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस दिखती है, एकदम गर्म फील होता है, हेडेक, सर दर्द चालू हो जाता है, कई समय में झटके आना चालू हो जाते हैं, चीज़ें अगर समय पर नहीं ठीक हुई चीज़ की है तो कभी किडनी फेल हो जाती है, कभी मसल्स पूरी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ये एक के बाद एक कॉन्सिक्वेंसेस कॉम्प्लिकेशन दिखने मिलता है जैसे जैसे समय बढ़ता है, या जितनी तीव्र गति की आपका ही स्ट्रोक है आप अगर समय पर उस पर नहीं ध्यान दे पाते हैं तो। और बहुत आम है ये, है ना, पहले के लोग कहते थे कि घर से बाहर निकलो तो पानी पी के निकलो, इस गर्मी में छाछ पियो, मट्ठा पी
1: प्याज
0: के,
1: रख लो
0: जी
1: जेब में।
0: प्याज लेके चलो,
1: जी।
0: अपना ढीले ढाले कपड़े पहनना चाहिए, ढीली पैंट्स पहने, सर पे एक
1: व्हाइट
0: छे
1: कलर के कॉटन
0: हाँ
1: का
0: हाँ
1: यूज
0: कॉटन
1: करें।
0: है, गमछा बांध लीजिए,
1: जी।
0: है ना। तो इससे ये रहता है कि आपको शरीर से वेंटिलेशन बना रहना चाहिए, टाइट कपड़े से पसीना बाहर नहीं आता, हीट बाहर नहीं आ पाती, तो आपके अंदर का ही थर्मोरेगुलेशन आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस शरीर में आते जाते हैं। और अच्छा, इसकी खास बात यह है कि आप सिर्फ इससे नहीं पता कर सकते कि अच्छा मुझे मैंने पानी कम ज़्यादा पिया है कि नहीं, या मुझे प्यास ही नहीं लगी अभी, तो कई लोग सोचते हैं मुझे प्यास ही नहीं लगी तो मैं कहाँ से डिहाइड्रेटेड हो गया, डिहाइड्रेशन में तो प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उसका डायग्नोसिस का तरीका नहीं है। पहले तो ये देखा जाए कि पेशाब आपको आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है कम आ रही है और डार्क येलो कलर की है आपकी, तो आप समझ जाइए आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपको तुरंत पानी पीना है, थोड़ा सा अपने सर पे पानी मारना है, पंखे के नीचे बैठना है, अपने आप को थोड़ा सा ठंडा करना है अपने शरीर को, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इंसान समझ नहीं पाता क्या करूँ, वो बस सोचता रहता है कन्फ्यूजन में, ढंग से समझ नहीं पाता क्या कर रहा हूँ, और धीरे धीरे बॉडी का हीट उसकी बढ़ती जाती है और कॉम्प्लिकेशंस कॉन्सिक्वेंसेस चालू हो जाते हैं, सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, साइंस अलग अलग नज़र आने लगते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट भी इसका कुछ बहुत वो नहीं है कि कोई नहीं कर सकता।
1: जी
0: सबसे पहले जैसे ही समझ में आता है कि अरे अच्छा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, कन्फ्यूजन है, हेडेक हो रहा है और पसीना कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले एकदम रिस्क का ट्रीटमेंट ही रैपिड कूलिंग,
1: जी
0: स्पीड में आप अपने शरीर को ठंडा करना चालू कर दीजिए, जैसे कि पानी छिड़किए, पानी पीजिए, बर्फ़ के पानी में हॉस्पिटल्स में लेटा दिया जाता है कि आप बैठ जाइए, ऊपर से पानी डाला जाता है, आजू बाजू में बर्फ़ रख दी जाती है,
1: क्योंकि
0: सुनने वालों
1: एटमॉस्फेयर क्रिएट
0: हाँ
1: किया जाता है
0: कि
1: थोड़ा।
0: एकदम से, और अच्छा इसका ट्रीटमेंट ही यह है रैपिड कूलिंग, सुनने वालों को अजीब लगता है कि एकदम से गर्म ठंडा कैसे, लेकिन इसका ट्रीटमेंट ही है और ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इसका,
1: अच्छा
0: मतलब यही बेस्ट है।
1: जी
0: अब रैपिड कूलिंग देसी तरीका जो रहता है कि आप एकदम से अपने आप को एकदम से ठंडे में ले आइए, एकदम

0: बर्फ के पानी में बैठ जाइए एकदम अपने ऊपर करिए, पंखा ऊपर अपने ऊपर घुमाइए,
1: किस स्टेज में होना चाहिए? मतलब ऐसा तो नहीं कि जैसे अपन बाहर से आए और एकदम से ठंडा पानी पी लिए तो ये इसमें तो और उल्टा लू लगने का डर है?
0: नहीं एकदम आप पानी तो पीजिए,
1: थोड़ा रेस्ट करके
0: हाँ,
1: पीजिए, मतलब
0: आप बैठिए पानी पीजिए, बैठिए, आपको पहले तो समझ में आएगा आपकी यूरिन से आपका आपको कैसा लग रहा है, हेडेक लग रहा है, क्या लग रहा है। और जरूरी नहीं आप एकदम ठंडा पानी ही पीजिए
1: जी,
0: आप पानी पीजिए। आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए आपको आइस वाटर में बर्फ के पानी में बैठना है या लेटना है,
1: ठीक।
0: ठंडा पानी भले ना पीजिए आप, पर पानी तो पीजिए, पानी पीजिए, पंखे के नीचे आप रहिए, पानी छिड़किए अपने ऊपर।
1: वैसे तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सुरक्षित रखें और छांव में छांव का इस्तेमाल करें। और अगर ट्रैवल करना पड़ ही रहा है तो मतलब एक व्हाइट कलर का कॉटन का गमछा यूज करें,
0: ढीले ढाले कपड़े पहने,
1: ग्लव्स यूज करें ताकि डायरेक्टली जो ये यूवी जो किरणें हैं ये आप लोगों को मतलब शरीर में ना लगे, हेड में ना लगे, अपने सर को बांध के रखें, गॉगल्स का यूज करें, आंखों पे भी बहुत,
0: सर को बहुत टाइट नहीं बांधना रहता है,
1: हाँ मतलब थोड़ा ढीला।
0: ये सलाह देते हैं कि टोपी भी आप ऐसी पहनी जिसमें छेदे हों कि जिससे
1: प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए,
0: इवेपोरेशन, आपके पसीना इवेपोरेट हो पाए, नहीं तो अंदर अंदर ही हीट आपकी बनते जाएगी। जैसे उदाहरण आपको मैं देता हूँ कार का
1: जी,
0: पार्किंग लॉट्स में कई बार लोग कार खड़ी करके चले जाते हैं, अब उसमें जो उसके विंडोज रहते हैं, मिरर्स लगे रहते हैं, उसमें ग्लास स्ट्रक्चर जो रहता है उसकी वजह से अंदर हीट ट्रैप हो जाती है। हम जैसे ही खोलते हैं एकदम से कैसे गर्म
1: भाप लगता है,
0: तो इसी में इंसिडेंट ये होता है कि मान लीजिए बाहर का तापमान है 24-25 डिग्री का, लेकिन आपकी कार खड़ी है एकदम पार्किंग उसमें, अंदर अंदर ही उसका टेम्परेचर पहुंच गया 44-50 डिग्री का कार का अंदर का, और आप एकदम से अंदर जाके बैठ रहे हैं। अब आप और जब तक आपका एसी काम करे या वो हवा निकले आपकी हालत क्या हो जाती है?
1: सही बात है।
0: इसी में दुर्घटनाएं ये होती हैं कि कई बार इंसान पार्किंग में कार में अपने बच्चे को या जो भी बुजुर्ग रहता है उनको बैठा देता है या अपने डॉग्स को, कि जब तक वो 2 मिनट का काम है कि मैं आ जाता हूँ कुछ सामान लेकर के, आप कार में हमारा वेट करिए बैठिए। और ये दुर्घटना इसमें होती है कि बाद में जब तक वो पहुँचते हैं तो पता चलता है आगे वाला हेडेक में है या बेहोश हो गया है, कंफ्यूजन में है, क्योंकि अंदर अंदर ही वो हीट उसकी बॉडी बाहर ही निकल पाई, उसके शरीर से भी बाहर नहीं निकल पाई और वो एक पैक्ड कार के अंदर बैठा
1: जी,
0: हुआ
1: जी,
0: है जिसकी हीट बाहर नहीं निकल पाई
1: जी,
0: और तापमान सच में 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है जबकि बाहर का नहीं रहता
1: जी जी। अभी जैसे अमूमन अपन बात करें अभी के जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, लगभग 43 के आसपास टेम्परेचर अभी चल रहा है बालाघाट में, तो 43 टेम्परेचर है और अपने बॉडी का टेम्परेचर शायद 98.6 डिग्री फारेनहाइट है ना, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है फारेनहाइट 98.6, तो अपना शरीर का 37 है और बाहर का 44 है, तो इस टेम्परेचर में बहुत जो ड्रास्टिक चेंज, अगर बाहर अपन निकलते हैं तो लू लगने की भी संभावना है। वैसे अभी लू का भी समय आ चुका है क्या? लगभग आ ही चुका है ना, अभी कुछ समय बाद नौतपा भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें भी लू की जो है हवाएं चलती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है और किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे लू लग गई है या मुझे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गया हूं, तो ऐसी स्थिति में क्या उसे कुछ होम प्रिकॉशंस क्या अपन दे सकते हैं कि भाई ओआरएस पिला दें, या भैया वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है अब इंस्टेंट, अगर उसको अपने को जरूरत पड़ रही है तो अपन कैसे उसका प्रिकॉशन कर सकते हैं?
0: मैं आपको फिर से वही चीज बता, शरबत छाछ जो है आपके जिस तरह के हल्का नमक के हल्की शक्कर का बनाया हुआ शरबत, नींबू पानी छाछ है ना, उसमें बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं, या सिर्फ नमक पानी ही आप ले लें तो आपके बॉडी से डिहाइड्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी।
1: उसमें शक्कर भी मिलाना होगा?
0: हाँ, क्योंकि हाँ हमारी एनर्जी लो हो जाती है गर्मी में, इसके लिए ग्लूकोज की हमको जरूरत रहती है।
1: अच्छा।
0: आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में ग्लूकोज की ऐड चलती है तो बॉडी हमारी बहुत जल्दी ग्लूकोज कंज्यूम कर लेती है, तो इसलिए हमको ग्लूकोज की जरूरत रहती है। तो साथ में नींबू पानी, शक्कर नमक का घोल, सिर्फ नमक का घोल भी अगर ले लें जो पास में आपको हो, आप
1: जी जी जी,
0: ढीले ढाले कपड़े पहने, पानी छिड़किए अपने ऊपर
1: जी जी,
0: है ना, हल्का सा शावर ले लीजिए तो बॉडी का टेम्परेचर आपको जल्दी से, और रैपिड कूलिंग ही इसका एक ट्रीटमेंट है। अच्छा, जब एडमिशन भी होता है मैं आपको बताता हूँ, अगर स्थिति गंभीर है, पेशेंट आया हॉस्पिटल में, हमने एडमिट कर लिया, तो उन्हें हम जो आईवी भी देते हैं ना वो कोल्ड आईवी फ्लूइड देते हैं।
1: अच्छा
0: जी, ठंडा, उसका जो बैग्स रहते हैं आईवी फ्लूइड वो ठंडे रहते हैं।
1: अच्छा,
0: जिससे बॉडी का

0: टेम्परेचर, क्योंकि वो बॉडी में जाए तो उसको जल्दी से जल्दी ठंडा करे। इससे
1: अच्छा
0: हमें जो एक तरीके से आप बोलिए जो ब्लड का जो पैरेलल लिक्विड है जो हमसे, वह हमको उसको कवर नहीं करना है, डिहाइड्रेशन को ट्रीट नहीं करना है हमको, जो थर्मो रेगुलेशन जो बिगड़ा है उसका, तापमान को, टेम्परेचर को, हमको उसको कवर करना है, क्योंकि हमारी बॉडी उस तरीके से उसे प्रोसेस नहीं कर पा रही। फिर आगे स्थिति में अगर उतना स्पीड में नहीं करें तो कई बार जो चीज़ 2 दिन में ठीक हो सकती है, रिकवरी की अगर मैं बात करूँ तो पेशेंट आएगा 1 से 2 दिन में वो थोड़ा रिकवर हो जाएगा, अच्छा। लेकिन अगर समय पर चीज़ें नहीं हो पाई, लापरवाही बरती गई है ना, कि नहीं कुछ नहीं है मैंने घर में ये कर लिया,
1: मतलब
0: और
1: अपने को
0: हाँ
1: अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोस अगर
0: जी,
1: हो जाता है तो अपन पहली
0: और
1: फुर्सत
0: ट्रीटमेंट भी
1: में ट्रीटमेंट अपन लेने के लिए हॉस्पिटल की तरफ रुख
0: जी,
1: करें, बहुत ज़्यादा घरेलू उपचार पर बिलीव ना
0: हाँ
1: करें, है ना। मतलब अगर इंस्टेंट ज़रूरत है घरेलू उपचार की, भाई हॉस्पिटल थोड़ा दूर है, जाने में समय लग रहा है, तो इंस्टेंट आप थोड़ा सा उसके प्रिकॉशंस ले सकते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: रेमेडीज ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो हॉस्पिटल अप्रोच करना ही
0: बिल्कुल,
1: चाहिए।
0: क्योंकि अगर समय पे नहीं हुआ ना तो रिकवरी में आप मानिए 2 महीने से साल भर तक के भी लगता है प्रॉपर रिकवरी में,
1: जी,
0: और ये जानलेवा है हीट स्ट्रोक
1: अच्छा
0: जी। इसमें डेथ के इंसिडेंस काफ़ी सारे होते हैं, ये एक इमरजेंसी केस होता है, इसलिए
1: अच्छा
0: हम इसे लाइटली नहीं लेते हैं, इसलिए हमने कहा कि रैपिड कूलिंग इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है।
1: और जैसे किसी को नहीं समझ में आ रहा है, उसको यूरिन भी अभी तुरंत में नहीं हो रही, तो अगर उसको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, गन्नाटा आ रहा है, उसको धुंधला दिख रहा है, तो क्या ये भी कुछ लक्षण हो सकते
0: हाँ
1: हैं?
0: यही लक्षण है,
1: ऐसे ही लक्षण है।
0: डिजीनेस, आपको बहुत एकदम कमजोरी लग रहा है, धुंधला दिख रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है,
1: घबराहट हो रही है।
0: घबराहट हो रही है, यही सिम्टम्स हैं।
1: ओके, ठीक।
0: इसलिए आप बस कुछ नहीं, एक अपना शक्कर नमक का आप एक घोल पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, थोड़ा सा आराम कर
1: कुछ
0: लीजिए,
1: रिलीफ
0: अपने ऊपर
1: मिल
0: पानी
1: जाएगा।
0: छिड़क लीजिए, पंखे के नीचे बैठ जाइए, अपने हाथ से अपने ऊपर पंखा चला लीजिए, किसी भी पत्ते का, पेपर का,
1: जी,
0: कि
1: इंस्टेंट
0: थोड़ा सा
1: रिलीफ मिल जाए
0: कूलिंग
1: उसको,
0: इफेक्ट
1: कूलिंग इफेक्ट आएगा।
0: जी
1: चलिए ठीक है, इस चर्चा को जारी रखेंगे। अभी
0: जी
1: हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: किधर है?
1: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
0: ये तो झटपट काम है।
1: कैसे?
0: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
1: और बाकी चेंजेस?
0: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
1: आरबीआई कहता है,
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: पटाखा एंड पटाखा एयर आर्म्स,
4: शादियां और अन्य अवसरों पर पटाखों की विशाल रेंज।
3: बालाघाट में एयर गन के अधिकृत विक्रेता।
4: एयर गन के प्रयोग से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को आंशिक आहत और डर से भगाएं, अपनी फसलों की रक्षा करें।
3: स्कूल कॉलेज गन शूटिंग के लिए भी संपर्क करें। पटाखा एंड पटाखा, सरेखा बाईपास रोड, बालाघाट।
4: मोबाइल नंबर 9406788702।
5: एक बार फिर स्वागत है सभी श्रोताओं का। और डॉक्टर साहब, मैं ही आपसे जानना चाहता था कि अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि हीट स्ट्रोक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब मुझे बताइए कि किस तरह का आहार लेना चाहिए जिससे हम हीट स्ट्रोक से बच पाएं।
6: जी अरविंद जी, मैं आपको ना गर्मी के हिसाब से एक अच्छा डाइट आपको बताता हूँ, एक अच्छा आहार जिससे ओवरऑल आपका समर्स के डे में, गर्मी के दिन में, बिना किसी बीमारी के आपका समर का, गर्मियों का महीना बहुत अच्छे से निकल जाए, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ना उठते साथ ही 1 से 2 ग्लास पानी पिए
5: जी।
6: फिर जो भी आप अपना लेते हैं, आप अपना नाश्ता हल्का फुल्का लेते हैं, वो सब आप करिए।
5: नाश्ते में क्या ले सकते हैं, मतलब समोसा, इडली?
6: नहीं, ये सब चीजें तो हम कभी
5: मतलब इडली अगर खा सकते हैं जो मतलब तेल से ना बने ज्यादा,
6: है ना। आप ये सब चीजें, रागी का आइटम, बाजरे का आइटम, मक्के, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। पोहा चलेगा। फिर आप फ्रूट्स चालू कीजिए। आप सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ऐड करना चालू करिए। लोग इसे अभी तक के अपने लाइफस्टाइल में नहीं लेके आ पाए हैं, पर गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि धूप 11 बजे 10 बजे जो गर्मी स्टार्ट हो सकती है उसके पहले ही अगर आप अपने आप को अच्छे फ्रूट्स दे देंगे, तरबूज, आपका मस्क मेलन जो होता है, खरबूजा, फिर पपीता, आपका बनाना, और जो भी सीजनल फ्रूट्स।
5: अभी जैसे कि कुछ समय पहले मैंने अभी कुछ समय वो देखा था न्यूज़ वगैरह, उसमें ये तरबूज खाने से कुछ लोग बीमार हो गए थे और हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो मतलब उसको भी थोड़ा सा, उसकी कुछ परख वगैरह है, मतलब उसको जब आप काट के देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लाल अगर दिख रहा है तो समझ जाइए कि वो तरबूज ठीक नहीं है, खाने योग्य नहीं है। तो वो आप थोड़ा सा देखिए, इंजेक्शन वगैरह भी आजकल ज़्यादा लगाया जा रहा है, तो तरबूज खाने में थोड़ी सतर्कता ज़रूर बरतें।
6: ये हर फ्रूट के साथ है, ये हर खाने के साथ है। आप समझिएगा, समय से पहले जब फ्रूट्स आ जाते हैं तो आप उसको समझिएगा कि वो 1 साल पहले से स्टोर हाउस, वेयर हाउसेस में पड़े हुआ है, कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ रहता है वो आधा कच्चा। फिर उसे पकाने के लिए स्पीड में बहुत सारे केमिकल्स, इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है, स्प्रे किए जाते हैं केमिकल्स, जिससे वो जल्दी से पक जाएँ। और वो आपको समय से पहले ही मार्च में, फरवरी में आपको ये फ्रूट्स आना मिलना चालू हो जाता है। तो आप ये समझिए कि नेचुरल समय तो आया नहीं है, फसल अभी तक कटी नहीं है। जैसे आम के बारे में आपको बताऊँ, मैंने अभी आपको आम का नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि अभी तक आम की फसल जो सुनने में आ रहा है कि कटी नहीं है, लेकिन मार्केट में आम है, कुछ जगह कट गई हैं, पर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आम अगर मिल रहा है तो आप समझिए पिछले साल का कोल्ड स्टोरेज का रखा हुआ है।
5: वो खास तौर से वो जो आम का जूस मिलता है 5 रुपए वाला, हाँ। वो बहुत खतरनाक होता है। एक बार मैंने पिया था और मैं 3 दिन बिस्तर में पड़ा रहा।

0: खतरनाक है वो।
1: नहीं, ये सच में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए जो इनके ग्लास मिलते हैं, जबकि आप देखें कि 150 रुपए, 200 रुपए किलो तो आम मिल रहा है आपको,
0: जी
1: और एक ग्लास में 200-250 ग्राम तो आम लग ही जाता है।
0: जी जी
1: 40 रुपए का आम तो वहीं लग गया,
0: जी
1: उसमें दूध डलेगा, शक्कर
0: वो
1: डलेगी,
0: एसेंस
1: आगे
0: वगैरह सब
1: वाला दो
0: मिला
1: रुपये
0: करके
1: अपने
0: दे।
1: कमाएगा।
0: जी जी
1: तो कुछ मिलावटें हैं, लोग अपना घर चलाने के लिए, अपनी लालच में ये
0: जी जी
1: चीज़ें
0: जी
1: करते
0: तो
1: हैं।
0: जैसे अगर हम अभी बात कर रहे थे कि हमको एक आहार जो लेना है सुबह, तो मतलब जैसे अगर हम खाने की बात करें, चलिए ये तो ब्रेकफास्ट की बात है, फ्रूट्स लेना चाहिए ब्रेकफास्ट में। खाने की बात करें, लंच की बात करें, डिनर की बात करें, तो इसमें किस तरह का भोजन हमें लेना चाहिए?
1: देखिए, आप जब लंच पे आएंगे ना, तो सबसे पहले लंच के पहले आप 11-12 बजे एक हाथ गिलास, आप बहुत तरह हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के हर्ब्स और प्लांट्स हैं जिसके आप जूस पी सकते हैं, शरबत जो हम बनाते हैं, बेल का शरबत, जो कूलेंट्स टाइप के होते हैं जो शरीर को ठंडकता देते हैं। आपने छाछ ले लिया, लस्सी ले लिया, नींबू पानी ले लिया, जलजीरा ले लिया, शिकंजी ले लिया, जो इजी टू मेक हैं, बहुत कच्चे आम का पन्ना आपने ले लिया, सबसे अच्छी हेल्दी चीज़ है। अब इस सीज़न में आप एक ही वो ले लीजिए 11-12 बजे। फिर आप 2-2.5 बजे जब अपना दोपहर का आहार लेंगे, तो सबसे पहले आप एक प्लेट भर के खाना खाइए, ए सलाद लीजिए। आप सलाद में ककड़ी, टमाटर, प्याज, थोड़े फ्रूट्स अपने ले लिया। ये लेने के बाद आपको अब जितनी भूख लगी है, अब आप उसमें जो आपको पसंद है, रोटी सब्जी दाल चावल, आप ये ले लीजिए, है
0: जी
1: ना। ये आपका दोपहर का हो गया। फिर आप जैसे शाम के समय में आएंगे, शाम के समय में फिर कुछ आपने ले लिया, ब्लैक टी ले लिया, ग्रीन टी ले लिया, नींबू पानी ले लिया, जनरली आपने थोड़ा सा कुछ आधा ग्लास दूध ले लिया आपने, आधा कप हल्दी वाला, वो भी चलता है। फिर रात में आप आ जाइए, रात में तो हम वैसे ही कहते हैं कि भाई गरीबों की तरह खाना चाहिए, सबसे कम खाएं, जितना आपको पसंद आ रहा है आप खाइए, पेट भर के जाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का जो आपको पसंद आ रहा है आप खाइए, और 1-2 घंटे 3 घंटे बाद आप सो जाइए।
0: नहीं, जैसे अब आपने बोला कि दोपहर में 2 बजे तो आप लंच कर रहे हैं, लेकिन सबकी दिनचर्या लगभग एक समान नहीं होती है। जैसे मैं को जाना होता है ऑफिस, तो मैं को सुबह 9 बजे डायरेक्टली मैं खाना खाता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता कि मैं फ्रूट्स की तरफ जाऊँ या ब्रेकफास्ट की तरफ जाऊँ, तो मैं जैसे डायरेक्ट ही अपना लंच करता हूँ। तो मेरे को क्या शाम तक और रात तक सर्वाइव करना होता है, तो मैं उस दौरान क्या हैवी लंच ले सकता हूँ?
1: नहीं, आप हैवी लंच को तो अवॉइड करिए। आप
0: अच्छा।
1: अपने साथ में बैग में एप्पल रख लीजिए, बनाना रख लीजिए, जो इजी टू हैंडल, जो कैरी आप कर सकते हैं, फ्रूट रख रख लीजिए, और आप ना साथ में 1 से 2 लीटर की पानी की बोतल लेके चलिए।
0: अच्छा।
1: उस पानी की बोतल में ना आप नींबू, नींबू का स्लाइसेस डाल के, या नींबू का रस मिला दिए, थोड़े ककड़ी के स्लाइसेस मिला दिए, थोड़ा सा आपने उसमें तुलसी के पत्ते आपने डाल दिया, थोड़ा सा आपने सौंफ डाल दिया, इलायची डाल दिया, ये चीज़ें आप उसका एक बना लीजिए। आप 1 लीटर 2 लीटर का आप बना करके आप अपने साथ रखिए, तो दिन भर में आप उसको एटलीस्ट 1 लीटर 2 लीटर तो आप वो पीए वाला पानी पीजिए।
0: जी
1: उससे आपको थोड़ा अच्छे मिनरल्स मिल जाएंगे, सॉल्ट मिल जाएगा, तो आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस आपके नहीं बनेंगे,
0: जी।
1: क्योंकि गर्मी में हमें पेट भूख सी समस्या नहीं रहती है, आप नोटिस कीजिएगा,
0: जी।
1: जो समस्या रहती है हमें डिहाइड्रेशन की, पानी की
0: जी
1: रहती
0: जी
1: है।
0: जी जी कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती गर्मी में बहुत
1: बिल्कुल
0: ज़्यादा।
1: सही।
0: मेरे दोस्त ने समोसे ला के दिया, बोले खा लीजिए, मेरा ना हो पाएगा, नहीं खिलाता। अभी तेल वाला सामान खुद ही, मतलब खुद से ही इच्छा नहीं होती
1: नहीं,
0: खाने की।
1: क्योंकि अर्पित जी, हमारे शरीर में ना 70% पानी है,
0: जी।
1: हमारा शरीर बना है 70% पानी से और 30% दूसरी चीज़ से। तो गर्मी के दिनों में एटलीस्ट हम उसे 70% पानी तो दें, खाने का जब समय मिले कम ज़्यादा आप करके खा सकते हैं, लेकिन पानी की आप कमी मत होने दीजिए।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। बताइए आप गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: मुझे जो आप माचिस फिल्म का गाना चला दीजिए, चप्पा चप्पा चरका चरका।
0: चलिए, आपकी पसंद पे सुनवाते हैं ये गीत।
1: जी।

0: इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम युवाणी यहीं समाप्त हुआ। आज हम इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थे डॉक्टर रोहित सचदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सचदेव डॉक्टर साहब।
1: आपका भी फिर से धन्यवाद अर्पित जी।
0: जी जी जी, उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को जो जानकारी चाहिए थी वो उनके पास तक उपलब्ध हो गई होगी।
1: बिल्कुल, मेरी भी यही इच्छा है कि वो इस जानकारी का लाभ उठाएं।
0: जी, बहुत धन्यवाद।

FM-band 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत और इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ओम शांति ओम फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ है KK की।

श्रोता, अभी आपने सुना राजनीति फिल्म का गीत। अब आइए सुनते हैं राज फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं राजू सिंह और सोनू निगम की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं आतिफ असलम और प्रीतम की आवाजों में। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के साथ मैं था आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट,
0: कार्यक्रम गुड इवनिंग में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र, और आज हमारे साथ स्टूडियो नंबर 1 में मौजूद है
2: नरेश सिंगंधुपे।
0: नरेश भैया, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे इस कार्यक्रम के साथ हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि ये गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम उन्हीं के लिए है, और हम बहुत से विषयों को लेकर आए हैं बहुत अच्छे गीतों के साथ।
0: बहुत बढ़िया नरेश भैया, अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक उद्बोधन, एक संदेश देखा था माननीय प्रधानमंत्री का। आज हमारा ये प्रोग्राम है इसी पर केंद्रित है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया है सभी लोगों को कि पेट्रोल का, डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत हो तभी वो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी वहाँ पर झगड़ा चल रहा है ईरान का और अमेरिका का।
2: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि राष्ट्रहित की बात है, तो जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, आगे आना चाहिए। चूँकि आयात जो बाहर से हो रहा है पेट्रोल डीजल, उसमें भारी कमी होने की वजह से हमें इस आपदा का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें अपने रूटीन में ये चीज़ें लानी होंगी कि हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मुख्य रूप से जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ में सबसे पहले आती है पेट्रोल डीजल, जिसकी वजह से हमारा आवागमन जो है पूरी तरह से निर्भर है, तो इसे यदि हम बहुत ही

0: कम करें, अपनी आवश्यकताओं को कम करें, साथ में जो पैदल चलने का जो है हमारा रूटीन, हम उसको बढ़ाते रहें, तो ये हमारे सेहत के लिए भी बेटर है। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद पर निर्भर होकर के काम करें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल न करें, तो ये देश हित के लिए बहुत अच्छी बात होगी।
1: जी जी जी, मैं भी देख रहा था, बहुत सारे वीडियोज़ देख रहा था, माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने काफिले को काफ़ी कम कर लिया है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपने काफिले को कम कर लिया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ गाड़ियाँ हैं तो वो चल रही हैं, और माननीय हमारे जो जिलाधीश महोदय हैं जबलपुर में भी हाईकोर्ट के, वो भी आज

0: जी के मतलब संदेश को इस तरह से गंभीरता से ले रहे हैं, तो हम सब को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोशिश करें तो हम पर्सनल व्हीकल्स को अवॉइड कर दें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं तो एक बात अलग है, लेकिन पर्सनल व्हीकल्स को अगर हम लोग अवॉइड करेंगे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, इनको अगर हम लोग प्रेफरेंस देंगे और इनसे अगर हम यातायात करेंगे तो हम बहुत ही बचा पाएंगे मतलब अपने पेट्रोल डीजल को, और सुगमता से हम सही जगह पर पहुँच भी जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन हमारा ईजी हो जाएगा जिससे हमारा पेट्रोल और डीजल बचेगा भी, है ना।
1: जी बिल्कुल। अभी आपने बात कही कि हमारे जो बालाघाट के साथ साथ हमारे बहुत सारे देश के अलग अलग जगहों से कुछ लोगों के संदेश आ रहे हैं, तो इस संदेश में यानी जनता के बीच में अपनी जो आवाज़ है, अपनी जो बात पहुंचाना है, इसके लिए हमेशा उच्चाधिकारी ही सामने आते हैं। तो ये सिर्फ एक अकेले व्यक्ति की बात नहीं है, ये इस देश के हर व्यक्ति की बात है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हों, उन्हें इस संदेश को सही तरीके से लागू करने के लिए खुद को ये नियम मानना चाहिए, ताकि हमारे और भी जो लोग हैं उन तक ये पहुंचे और वो भी इस पर अपना वर्क कर सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वैसे स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, ऐसा पैनिक होने की इसमें आवश्यकता नहीं है कि भाई पेट्रोल डीजल मिलेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल डीजल की हमारे पास मतलब सरकार के पास मतलब प्रॉपर उनके पास पूरा कोटा है, उनके पास कोई दिक्कतें नहीं है। बस यही है कि इस्तेमाल हम थोड़ा कम करें, बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: जितना रिजर्व रहता है, इतना बड़ा देश है, लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या है, लगभग सभी लोगों के पास आज की डेट में व्हीकल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा खपत हमारे ईंधन की होती है। अगर ईंधन को बचाएंगे तो ये हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी ही बात है। इसमें ऐसा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं कि मिलेगा ही नहीं, यानी बहुत सफिशियंट मात्रा में पेट्रोलियम उपलब्ध है सरकार के पास और हम तक वो पहुंच रही है। जैसे कि अभी तक भी मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिखी है पेट्रोल डीजल में, हमारी गाड़ियों में बराबरी से भर जाता है।
1: बिल्कुल।
0: बस ये कि इस्तेमाल का थोड़ा थोड़ा कम इस्तेमाल करें, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ इस्तेमाल करने की आवश्यकता।
1: इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा है तो हम बिल्कुल धड़ल्ले से करें, नहीं, अभी हमें सबसे पहले राष्ट्रीय हित को ज़्यादा सर्वोपरि रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने हमसे एक उम्मीद रखी है, तो हमें एक सही देश के नागरिक होने के नाते हमें ये करना तो चाहिए।
0: जी, बिल्कुल आपकी बात तो एकदम सही है। आज मेरी मम्मी भी कह रही थी कि सोना, मोदी जी ने सोने के लिए भी मना करे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सोना खरीदने के लिए भी, मतलब बहुत अगर ज़रूरत ना हो तो ना खरीदे, क्योंकि ये भी हमारे गोल्ड रिजर्व भी है, फॉरेन पर डिपेंड रहता है, तो बहुत ज़्यादा सोना अगर ज़रूरत नहीं है तो ना खरीदें, है ना। शादी ब्याह है, कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, एक बात अलग है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, तो इससे काफ़ी राहत भी मिलेगी।
1: बिल्कुल, स्टोर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कई लोग ऐसा होता है कि हम अभी सोना खरीद के रख देते हैं और वो पर रहेगा, उससे हमें कुछ लाभ होगा, भविष्य में ही उसका रेट ज़्यादा होगा तो हम उस पर ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे। तो इस तरह की सोच को अभी अपने को खुद रोकना होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर वही बात आती है राष्ट्र हित की, तो हमें राष्ट्र हित के लिए इन सब चीज़ों को रोकना होगा। अगर बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, तभी आप सोना लें, उसके अलावा जो है अपने
0: सोने की जगह नींद ले ले ज्यादा अच्छा है।
1: खर्चे पर ध्यान दें,
0: सोने की जगह नींद ले ले तो ज्यादा अच्छा है। मेरी मम्मी मुझे सुबह से यही कहती है कि बेटा सोना नहीं लेना है। मैं बोला ठीक है मम्मी, सोना नहीं ले पाएंगे, नींद जरूर ले लेंगे तो हम सो जाते हैं। मतलब एक हास्यास्पद स्थिति का निर्माण हो जाता है सुबह सुबह।
1: बिल्कुल
0: जी। तो आइए फिर एक गीत सुन लेते हैं, बताइए कौन सा गाना आज सुनेंगे आप।
1: जी, मोहम्मद रफी का एक गाना सुनवाते हैं अपने किसान अपने सभी श्रोताओं को, आज मौसम बड़ा बेईमान है।
0: बहुत अच्छी आपकी ये पसंद है, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस कार्यक्रम में। नरेश भैया, मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने और भी बहुत सारे संदेश दिए थे
1: जी,
0: तो इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री का दूसरा संदेश ये था कि उन्होंने जो खाने का तेल है उसके इस्तेमाल पर भी बात बोली है कि आप खाने का तेल का इस्तेमाल कम करें।
0: जी,
1: और एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि हम जिस तेल का इस्तेमाल करते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की ज़्यादा संभावना होती है। कम से कम कोलेस्ट्रॉल का जो है हम कंजप्शन करें तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि तेल का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि बिल्कुल यानी सब्जियों में
0: हर जगह तेल ही तेल
1: दिखता है। जबकि हमारी नानी कहती थी कि हम पानी में भी सब्जी को अच्छी
0: बना
1: तरह से फ्राई
0: हैं,
1: कर लेते थे
0: और
1: बहुत अच्छे तरीके से खाना बन जाता था।
0: अच्छा,
1: और उस समय जो तेल मिलता था आज के तेल से बहुत अंतर है। आज के तेल में बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि वो उसको खाने लायक हो। और जब आप बाहर जाते हैं, फूड बाहर का आप खाते हैं, तो उसमें देखना कि ज़्यादा तला भुना जो होता खाना, और उसमें ज़्यादातर तेल को बार बार गर्म करके कढ़ा करके
0: वही तेल का बार बार रीयूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं,
1: जिससे उस तेल की प्रकृति ही बदल जाती है और वो खाने की बजाय जहर का काम करता है।
0: सही बात है। और ईंधन के रूप में गैस को भी थोड़ा सा कम इस्तेमाल करने के लिए संदेश अभी तक प्राप्त हुआ है। जो गैस हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब कम यूज़ करना चाहिए उसका।

0: बिल्कुल, इंडक्शंस आ रहे हैं, इंडक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली की उसमें जो है खपत एक मेंटेनेंस में होती है, ऐसा नहीं है कि इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बिजली खपत होगी, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी तरह से एक तरफ से कुछ कम करेंगे तो दूसरी तरफ उसका
1: अपन उसको समानांतर हो सकता है, मतलब सब्स्टिट्यूट के हिसाब से अपन उसको यूज कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। और क्या है संदेश?
0: और भी संदेश है, जैसे यदि आप विदेश यात्रा करते हैं तो विदेश यात्रा को इस समय थोड़ा
1: मतलब बहुत जरूरी ना हो तो ना ही जाए, मतलब घूमने फिरने के लिए अगर जा रहे हैं आप तो उससे अच्छा है कि आप यही घूम लीजिए, बहुत सारी दूसरी जगह भी है पर्यटन के रूप में, हम गोवा के इस्तेमाल, मनाली के, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ घूम सकते हैं, जबरदस्ती की अपने को यात्रा नहीं करनी है।
0: बिल्कुल, आप यात्रा अपने घर से ही ना करें, सबसे बेटर ये होगा कि आप अपने व्हीकल पर चलें और अपने आसपास के क्षेत्रों में घूम लें, यही आपका सबसे बढ़िया
1: हमारा देश। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है ही तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए
0: आप देश में बहुत अच्छी
1: डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, है ना। जैसे बालाघाट के लोग पचमढ़ी चले जाते हैं घूमने के लिए, भी गर्मी बहुत है तो कान्हा चले जाते हैं,
0: तो ये वक्त भी है कि हम अपने देश की उन जगहों को जाने पहचाने और अपने देश को अच्छे तरह से,
1: सबसे पहले तो अपने ही देश में पूरी तरह घूम लें। विदेश जाने से पहले अपने ही देश और प्रदेश में अगर अच्छे से घूम लें तो मेरे को ऐसा लगता है पूरी उम्र तो यही घूमने में निकल जाएगी।
0: जी बिल्कुल,
1: ये एक स्टेटस सिंबल के मतलब रूप में इस्तेमाल करते हैं लोग कि मैं तो अभी वहां गया था, मैं तो अभी फलानी जगह गया था।
0: इससे क्या होगा अर्पित भाई कि हम जितना पैसा दूसरे देशों के लिए खर्च करते हैं, दूसरे देशों को फायदा पहुंचाते हैं, वही पैसा हमारे ही देश में हमारे पास आएगा।
1: बिल्कुल, अपन अपने देश का पैसा दूसरे देश में ले जाके खर्च कर लेते हैं, वहाँ अपनी पूरी करेंसी वहां ले जाकर के हम लोग थोप देते हैं उन लोगों को, तो इससे हमारी करेंसी में,
0: तो यदि वही उसी चीज को बचाकर हम अपने देश में करेंगे तो हमारे यहाँ पर रोजगार की संख्या बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सारे बेरोजगार साथी, उनको रोजगार मिलेगा।
1: सही बात है।
0: तो ये एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने कही थी आत्मनिर्भर बनना, तो यही है आत्मनिर्भर बनना, हम इस तरह से हमारे देश को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे टूरिज्म में भी पूरी इकोनॉमी वहीं के वहीं घूमती है, जैसे अगर अपन मान लीजिए कोई एक जगह पे गए, जैसे यहाँ से हमने पचमढ़ी गए, पचमढ़ी में जब हम जा रहे हैं तो फिर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वहाँ जाके होटल ले रहे हैं, वहाँ के होटल वाले को उससे मुनाफा होगा, फिर वहाँ जाएंगे हम, फिर वहाँ पर हम घोड़ा करते हैं घूमने के लिए, घोड़े वाले को प्रॉफिट मिलेगा, फिर वहाँ घूमते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो मतलब पूरी इकोनॉमी वहीं वहीं वहीं घूमते रहती है, हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा वहीं वहीं घूमते रहेगा, हमारे देश के लोगों को ही काम आएगा।
0: बिल्कुल,
1: काफ़ी अच्छी बात है ये तो। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी हमारे संदेशों में मतलब हमको मिली है कि कम से कम
0: और भी
1: इस युद्ध के समय में, मतलब सिर्फ एक युद्ध के समय में, बाकी समय पर आप थोड़ा कर सकते हैं, अभी तो कम से कम इस संदेश को आप गंभीरता से लें। और ये वर्क फ्रॉम होम वाला भी एक संदेश सुना हुआ है,
0: उसी की बात कर रहा था कि आप अपने घर से काम करें, जिस तरह से कोरोना का समय चल रहा था और उस समय हमने घर पर ही बैठकर काम किया था, चाहे वो जिस तरह का भी काम हो, तो हमने घर पर ही बैठकर काम किया था, तो आप अब भी अपने घर पर बैठकर काम कर सकते हैं, उसके लिए बाहर जाकर के ज़्यादा खर्चे करके उन काम को करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने तो देखा कि अभी भी बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जो बच्चे काम करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी आज ही मैंने देखा कि गुड़गांव में जो IT कंपनी के जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया, लेकिन ये सभी फील्डों पर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए IT वाले जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी करके अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जो सेल्स में हैं, जो मार्केटिंग में हैं, जिनको अपने व्हीकल को यूज करना काफी आवश्यक हो जाता है, तो उनके लिए फिर वो कैसे क्या करेंगे, EV का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: ये तो आवश्यक है, इसको भी बदला जा सकता है, काम तो आपको बाहर निकल के करना पड़ेगा अगर बाहर जाकर ही काम है, लेकिन आप यहाँ पर EV का इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर, आजकल बैटरी वाली गाड़ियां बहुत चल रही
0: हैं। बिल्कुल, और क्या कहते हैं कि जो भी आपका काम है आपको दिन भर तो करना ही है, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप सुबह सुबह जा करके या शाम को 4 बजे के बाद जा करके काम करें, तो इस समय के दौरान आप साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको गर्मी का जो है, धूप का जो है सामना ना करना पड़े, और आपका बचत भी आपके साथ,
1: और हेल्दी भी रहेंगे आप।
0: बिल्कुल,
1: आपको शायद पता नहीं होगा, मैं अभी यहाँ पर आकाशवाणी में पहुंचा हूँ तो मेरी साइकिल बाहर मैंने पार्क किया और मैं साइकिल से आया हूँ। मैं ये संदेश दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर हमारे आकाशवाणी के सभी मित्रों को भी ये संदेश देना चाह रहा था कि मैं साइकिल से, तो आज की डेट में जैसे बहुत ज़्यादा ना स्टेटस सिंबल में देखा जाता है कि भाई फलाना कार से आ रहा है, बड़ी वाली गाड़ी से आ रहा है, लेकिन जब से संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी साइकिल चलाते हुए देखा है जो काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं, और वो एक तरीके की संदेश दे रहे हैं कि भाई अगर हम चला सकते तो आप भी चलाइए।
0: बिल्कुल,
1: तो यही संदेश देने के लिए आज मैं भी साइकिल से आया हूं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने।

0: और अब संदेश के रूप में थोड़ा मनोरंजन हो जाए हमारे
1: जी
0: लिए,
1: बिल्कुल।
0: जो
1: आज कौन सा गाना आप सुनेंगे?
0: श्रोता हैं उन्हें। अब आप अपनी पसंद का गाना बजाइए।
1: अच्छा चलिए ठीक है, मेरी पसंद पर आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नरेश भैया, मेरी पसंद का गीत तो मैंने सुना दिया, अब आप अपनी पसंद की बातें बताओ।
2: बिल्कुल, हम फिर वहीं वापस लौट कर आते हैं जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के नाम संदेश दिया है। अच्छा। उसमें एक और संदेश यह है कि हमारे देश के जो किसान हैं, खेतीहर किसान, वो अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का जो है इस्तेमाल कम करें, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके हमारे जो किसान साथी हैं फसलें उगा लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लागत जो होती है वो इन्हीं पर होती है और हमें लागत कम करके खेती करने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, किसान साथियों का दर्द नरेश भैया से ज़्यादा कौन जानता है। नरेश भैया, एक और इसमें एक और संदेश है कि ये जो वो उनका मोटर होता है पानी जिससे वो सिंचाई करते हैं, वो मोटर भी डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों ऑप्शन में आते हैं। डीजल मोटर भी आती है जिससे पानी लगातार वो सिंचाई करते हैं लोग, और इलेक्ट्रिक से भी होता है। तो डीजल वाला जो पंप है उसमें भी अगर आप थोड़ा सा कटौती करें तो आपका डीजल बचेगा, मतलब उसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली वाला पंप।
2: नहीं, हमारे जो किसान साथी हैं वो आज लगभग पूरी तरह से मोटर पंप यानी जो इलेक्ट्रिक के मोटर पंप रहते हैं मोटर हाउस में, उसी से पानी की सिंचाई करते हैं।
1: जैसे दूरस्थ जहां बिजली का अभाव है,
2: बिजली का अभाव है, नाले से या नदी से अगर उन्हें पानी खींचना होता है तो वो डीजल पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जितना इस्तेमाल करते हैं वो न के बराबर ही है उसके।
1: हाँ, लगभग अब तो वैसे भी बरसात आ जाएगी, इसके बाद तो उन लोगों को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
2: और वैसे भी दूरस्थ क्षेत्रों में डीजल की उपलब्धता बहुत कम होती है, यहाँ वहां ट्रांसपोर्टेशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है। और फिर जहां पेट्रोल पंप्स होते हैं वहां पर आपको खुले में केन में डीजल और पेट्रोल नहीं मिलता है, तो उसकी उतनी मात्रा किसान साथियों को नहीं मिल पाती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक मोटर पर ही निर्भर रहते हैं। तो यहां पर भी एक बचत की बात आती है कि अगर प्रधानमंत्री ने सिर्फ 7 बातें बोली तो 7 बातें ही का हमें नहीं करना है, इसके अलावा भी हम अपनी तरफ से कुछ बचत कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए। लेकिन जब गर्मी का दिन है तो इन दिनों में मोटर पंप्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत होती है पानी की सिंचाई करने के लिए। गर्मी का दिन है, पानी का जल स्तर नीचे जाने की कारण
1: बिल्कुल उसके अपन सोलर पैनल्स का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, सोलर पैनल के भी पंप आने लगे हैं आजकल। हाँ। जो सोलर पैनल से चलते हैं वहां तो बिजली की आवश्यकता ही नहीं रहती, वो डायरेक्ट ही बिजली बना देता है और उससे लोगों का काम चलने लगता है, तो अपन इस तरफ भी जा सकते हैं।
2: जी जी, लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा खर्चे की बात आती है ना वो होते हैं रासायनिक उर्वरक और केमिकल्स। अगर इसकी जगह हम ऑर्गेनिक खेती करें, जैविक खेती करें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमारे किसान साथी इसकी शुरुआत कर चुके हैं, कर ही रहे हैं, तो ये एक देश हित में बहुत अच्छी बात है। हमारे किसान साथी जो हैं वो अब धीरे धीरे जैविकता की ओर बढ़ रहे हैं, जैविक फार्मूले अपना रहे हैं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें नहीं सिर्फ जैविक रासायनिक खेती ही करनी है, तो उसे बिल्कुल कम से कम करने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। किसान साथी अगर इस तरह से करते हैं तो वो भी देश के सम्मान में होगा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर होगा और उनका सम्मान होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बताया। और अभी जितनी भी अपील है हम लोगों ने आपसे की है, इसको हम सभी श्रोताओं को ही कहना चाहते हैं कि इसको गंभीरता से लें। बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं हो तो गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, है ना, कार का इस्तेमाल ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि हमारे देश हित में हम लोग कुछ योगदान दे सकें, है ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो सभी लोगों तक मुझे ऐसी उम्मीद है कि पहुंच गया होगा और सभी लोग इस पे अमल भी करेंगे
2: जी।
1: तो नरेश भैया, इशारा कर रही है घड़ी
2: जी,
1: हमारा कार्यक्रम खत्म होने पे है।
2: तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले श्रोताओं को हमारा ये आज का जो चंक है वो पसंद आया होगा।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम के साथ। मैं था आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे
2: नरेश सिंगंधुपे और इसी के साथ इजाज़त दीजिए।

0: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बालाघाट से
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट,
1: एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, शाम के 6:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के साथ एक बार फिर आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली गजल आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की अगली गजल आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की ही आवाज में।

इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त हुआ। FM बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त हुआ है कार्यक्रम सुगम संगीत का। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ देर बाद यानी शाम 7:05 पर हम रिले करेंगे दिल्ली से समाचार, 7:10 पर हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, 7:21 पर आप सुनेंगे किसान साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल, शाम 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम पॉप म्यूजिक। 8:45 पर हम रिले करेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। 9:15 पर स्पॉटलाइट समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई का।

दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई का। रात 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी आज की प्रसारण सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ। FM एंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 7:05 होने को हैं। अब हम रिले करेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों से की मुलाकात, कल से 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। देश में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, 3 दिन में 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित। देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। और अमूल मदर डेयरी के बाद सांची ने भी बढ़ाए दूध के दाम, कल से 2 रुपए प्रति लीटर होगा महंगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। वहीं विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने बैठक में कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है और हाल के संघर्षों ने कूटनीति की अहमियत को और साबित किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने और तकनीक का उपयोग सुशासन के लिए करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 6 दिन के विदेश दौरे पर निकलेंगे। वे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। नॉर्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा होगी। इस पूरे दौरे में रक्षा, व्यापार, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी नहीं है। पिछले 3 दिनों में 1,40,00,000 एलपीजी बुकिंग में से 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। वहीं मार्च से अब तक 7,00,000 से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए और 7,50,000 नए उपभोक्ताओं ने पीएनजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन

0: से मिलकर प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और प्रदेश को विमानन क्षेत्र में नेशनल मॉडल बनाने के लक्ष्य पर चर्चा की। डॉ. यादव ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से सौजन्य भेंट की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी शिष्टाचार मुलाकात की। प्रदेश में महिलाओं को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हैदराबाद की भार्गवी हेल्थ केयर के बीच एमओयू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रीवा जिले में 25 से 65 साल की करीब 10,000 महिलाओं को एचपीवी डीएनए आधारित जांच की जाएगी। एएनएम स्टाफ नर्स, सीएचओ और आशा कार्यकर्ताओं को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। भार्गवी हेल्थ केयर जांच और उपचार के लिए तकनीकी सहयोग देगी और मास्टर ट्रेनर्स की टीम भी तैयार करेगी। इस पहल का मकसद प्रदेश में सर्विकल कैंसर की समय पर पहचान और प्रभावी इलाज सुनिश्चित करना है। प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 625 किलोमीटर लंबा टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये 4-लेन सड़क मार्ग पेंच, काना, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ेगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जंगल वाले इलाकों में अंडरपास और स्लो ट्रैफिक जोन बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर से पर्यटकों को एक ही ट्रिप में चारों बड़े टाइगर रिजर्व घूमने की सुविधा मिलेगी। दिसंबर 2027 तक यानी सिंहस्थ 2028 से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देवास जिले के टोंककला के पास आज सुबह करीब 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। जिला अस्पताल के आरएमओ के मुताबिक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रशासन ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब प्रदेश के सबसे बड़े दुग्ध ब्रांड सांची ने भी दूध दो रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। नए दाम कल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे। सांची ने करीब 1 साल बाद दाम बढ़ाए हैं। इससे पहले 7 मई 2025 को बदलाव हुआ था। भोपाल में सांची की रोजाना 7.5 लाख लीटर से ज्यादा बिक्री होती है। दाम बढ़ने की वजह पशु आहार, ईंधन, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग की बढ़ती लागत बताई जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। ये बदलाव CUET UG 2026 की परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नरेला विधानसभा की द्वारका नगर स्थित प्राचीन बावड़ी की सफाई में श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि बावड़ी, कुएं और तालाब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इन्हें बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके बाद मंत्री सारंग ने चांदबड़ में संपर्क अभियान के तहत बिजली सेवा शिविर का शुभारंभ भी किया। प्रदेश में अब हर घर में गीला, सूखा और हानिकारक कचरा अलग अलग डस्टबिन में देना अनिवार्य होगा। नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने सभी नगरीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। खुले में कचरा फेंकने, प्लास्टिक जलाने और सार्वजनिक जगहों को गंदा करने पर अब जुर्माना वसूला जाएगा। बात मौसम की। प्रदेश में रिकॉर्ड गर्मी का दौर शुरू हो गया है। इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी है और रात में भी गर्म हवाएं चलने की चेतावनी है। झाबुआ, खरगोन, खंडवा, देवास, सीहोर समेत दर्जन भर जिलों में भी लू का असर रहेगा। वहीं अशोकनगर, विदिशा, सागर, छिंदवाड़ा और सिवनी में आंधी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 17 मई तक प्रदेश के आधे हिस्से में गर्मी का अलर्ट बना रहेगा। अब बात खेल की। आईपीएल में अब से कुछ देर में धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। लगातार 4 मैच हार चुकी पंजाब पर जीत का दबाव है। मुंबई ने पिछले मैच में बेंगलुरु को कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि आखिरी ओवर में भुवनेश्वर के छक्के से बेंगलुरु जीत गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में।

भोपाल के 25वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल में आज नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीजीपी कैलाश मकवाना ने बतौर मुख्य अतिथि सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में बिजली संबंधी शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए बिजली विभाग ने 3 शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। खंडवा में आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक में कलेक्टर ने स्वच्छता, जल संरक्षण और नशा मुक्ति जैसे सामाजिक अभियानों में जनभागीदारी को आवश्यक बताया। नीमच जिले के आईटीआई मनासा में 21 मई 2026 को युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। बैतूल जिला कलेक्टर ने दूरस्थ वन ग्राम झिरिया डोह में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। निवाड़ी जिले में धरती आबा ग्राम जनजातीय उत्कर्ष अभियान और आकांक्षी विकास खंड की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और सीहोर जिले के जिला खाद्य विभाग द्वारा राशन हितग्राहियों को मई और जून दोनों महीनों की राशन सामग्री एकमुश्त प्रदान की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों से की मुलाकात, कल से 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। देश में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, 3 दिन में 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित। देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। और अमूल मदर डेयरी के बाद सांची ने भी बढ़ाए दूध के दाम, कल से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी केंद्र भोपाल से। 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह बालाघाट का आकाशवाणी केंद्र है और स्टूडियो में अभी 7:21 हुए हैं। आइए चलते हैं कार्यक्रम किसान वाणी के साथ साथ चौपाल की ओर।

0: कार्यक्रम चौपाल सुन रहे सभी किसान भाइयों को आपके मित्र संतोष बिसेन
1: और नरेश सिंह अंधुपे का
0: नमस्कार। तो नरेश भाई, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और ये गर्मी हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे आम जनमानस के लिए निश्चित तौर पर अब चिंता का सबब बनते जा रही है, क्योंकि तापमान जिस हिसाब से लगातार बढ़ रहा है तो हमारे किसान भाइयों के साथ आम जनमानस, पशु पक्षी और पूरा जो वातावरण है वो एक आग के भट्टे की तरह तपता जा रहा है। और हमारे किसान भाइयों को खासकर इन विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो इस बारे में हम अपने आज के इस कार्यक्रम को केंद्रित करेंगे कि भाई आखिर ऐसे क्या क्या कारण हैं जिससे पर्यावरण जो है वो इतना ज़्यादा हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है और विपरीत परिस्थितियां जो हैं वो निर्मित होते जा रही है। इस बात की शुरुआत आप कहाँ से करना प्रारंभ करेंगे आज के इस कार्यक्रम में?
1: जी, जैसे कि आपने गर्मी का जिक्र छेड़ा है तो इस पर्यावरण की जो बिगड़ने की जो कारण है वो भी हम गर्मी से ही लेते हैं। महासागरों में जो पानी है इस समय बहुत ज़्यादा खौल रहा है, जिसकी वजह से भाप बनकर पानी ऊपर आ रहा है और जो गर्म हवाएं हैं वो तेज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से तूफान निर्मित हो रहे हैं, जैसे कि अभी अल नीनो जो तूफान है वो अभी भी एक्टिव है। और पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने का जो पूरा श्रेय है वो हम पर ही है, क्योंकि हमने अपने भौतिक साधनों की चाह में हमने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर दिया है।

0: जिसकी वजह से प्रकृति द्वारा हमें जिस तरह का मौसम प्राप्त होता था वो अब नहीं हो रहा है। जो ध्रुवीय क्षेत्र है पृथ्वी के, वहाँ के जो ग्लेशियर हैं, बर्फ़ है, वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से जल का स्तर बढ़कर समुद्री क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं, और वहीं पर जो एक प्रकार से ठंडक जो हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, और मौसम उसी से प्रभावित हो रहा है। तो जिसकी वजह से ये जो असमानता हमें देखने को मिल रही है, कभी पानी आ जाना, अचानक से मौसम बन जाना, तूफान आ जाना, ये सब जून जुलाई के समय की बातें होती थी, लेकिन अब ये मई से ही शुरुआत हो चुकी है, अप्रैल मई से इसकी शुरुआत हो गई है। अब जब अभी ही अगर महासागर का पानी खोलकर ऊपर उड़ जाएगा, मानसून को तबाह कर देगा, तो जब मानसून आने का समय रहेगा उस समय हमारे किसान साथियों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि हमारी मिट्टी में पानी की बूंदें गिरे और हम खेती किसानी का काम शुरू करें। वो अब जो है आगे समस्या थोड़ी चिंताजनक है।
1: बिल्कुल चिंताजनक है, और इन चिंताओं के लिए हमारे पास समाधान है कि हम पर्यावरण के साथ मिलकर कार्य करें, और इसमें सभी के सभी, इस पृथ्वी के हर जीव का योगदान है। तो हम मनुष्यों की भी एक पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा कृत्रिम साधनों का इस्तेमाल कम करें और जैविक साधनों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो नरेश भाई, अब हम अपने श्रोताओं को, किसान भाइयों को मनोरंजन की तरफ ले चलते हैं, बातचीत के सिलसिले को उसके बाद फिर जारी रखेंगे। तो सुनवाए देते हैं लोकगीत
0: जी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम में एक बार फिर सभी किसान साथियों का स्वागत है। मैं हूं नरेश सिंह अंधुपे
2: और मैं आपका किसान रेडियो मित्र संतोष बिसेन।
1: और संतोष भैया, अब हमारे किसान साथी बिल्कुल इस उम्मीद में हैं कि आज किसान वाणी के इस अंक में हम उनके लिए क्या क्या ले आए हैं। तो किसान साथियों, आज हम आपके लिए कुछ जानकारियां लेकर आए हैं और कुछ लोकगीत लेकर आए हैं। तो जैसे कि हम संतोष भैया बात कर रहे थे पर्यावरण की, पर्यावरण के संतुलन की, तो अब हमारे किसान साथी इसकी ओर जागरूक हो चुके हैं और अब वो जैविक खेती करने लगे हैं। धीरे धीरे माहौल तो बदलेगा, लेकिन लेकिन क्या होगा कि ये सब कुछ इकट्ठे नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने इतने वर्षों में उर्वरकों का इस्तेमाल कर करके जो हमने अपनी ज़मीन को बंजर बनाया है, जो उसकी पोषक क्षमता को कम किया है, तो वो सब धीरे धीरे वापस आएगी। आज भी हम अगर कोई किसान साथी ये ठान ले कि मुझे अपने खेतों में जैविकता लाना है, तो अगर जैविक खादों का इस्तेमाल करे तो 3 से 4 साल का उसको समय लगेगा। इस 3 से 4 साल के समय में उसकी पूरी जो भूमि है वो जैविकता से भर जाएगी और उसको उसके बाद सही उत्पादन, लागत कम में ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा।
2: बिल्कुल, उत्पादन मिलेगा और हमारे किसान भाइयों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट है वो भी लौटेगी। लेकिन नरेश भाई, इस गर्मी के मौसम में अगर हम पानी की बात करें और पानी को बचाने की बात करें, धरती के जल की बात करें, चाहे वो पेयजल के स्रोत के रूप में हो, चाहे वो दूसरे अन्य खुले तालाबों या फिर झीलों, चाहे नहरों, इन सब के रूप में हो, तो भी जो जल की महत्ता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आखिरकार भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए

0: ये इन्हीं स्रोतों की जरूरत पड़ती है। तो हम अपने किसान भाइयों को जल संरक्षण के ऊपर ली गई यह महत्वपूर्ण भेंट वार्ता सुनवाए देते हैं, जिसमें हमें जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्राप्त होने जा रही है। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि हमारे खेती किसानी के कार्यों में जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ जब गर्मी का मौसम आता है तो जल की कमी जो है इस ब्रह्मांड में हर जीव जंतु को महसूस होती है। साथ ही साथ जिस तरीके से हमारी धरती पर केवल 3% पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध है, और निरंतर इस जल की कमी को जंतु जगत के साथ साथ वनस्पति जगत भी महसूस कर रहा है। तो आज इसी तारतम्य में हमारे साथ हैं डॉक्टर दौलत ग्वालवंशी जी। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी सर, सभी को मेरा नमस्कार।
0: जी, जैसे कि जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हम सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे कि इस जल संकट के बढ़ने में ऐसे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं जो जल संकट को बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले इस बारे में बताएं।
1: सर, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि जो जल संकट है यह मुख्य रूप से तो जल चक्र के द्वारा ही संपन्न होता है, और हमारे जो आसपास के जो पर्यावरण के प्रदूषण है या पेड़ पौधों का कटाव है, जिनके कारण क्या हो रहा है कि जो मौसम है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है, जिसके कारण बेमौसम बारिश हो रही है, और जिस मौसम में बारिश होना चाहिए वह बारिश हो नहीं रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि पानी का जो रुकाव है वह स्थिर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमें जो है जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। और यह जो जल संकट है इसको अगर हमें दूर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौधे लगाना चाहिए। यह सभी जानते ही हैं कि पौधे के कारण ही जल का पुनर्चक्रण होता है, पौधे जल लेते हैं और जल छोड़ते भी हैं। तो नियमित रूप से अगर बैलेंस हम करते हैं या पेड़ पौधे लगाते हैं तो जल संकट से हम जो है उबर सकते हैं। जल संकट का दूसरा कारण यह भी है कि अतिरिक्त पानी का बहाव, पानी का व्यर्थ उपयोग, जिसके कारण भी जो है जल संकट सामने आ रही है। जल संकट का सामना जो है पहले शहरों में देखा जाता था, आजकल अब गांवों में भी देखा जा रहा है, क्योंकि शहर से तो पेड़ नदारद हो गए हैं, लेकिन आजकल जो है अब गांव से भी पेड़ नदारद हो रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं, वनों का नाश, इनके कारण जो है ये बहुत सारे ऐसे NGOs वगैरह भी हैं जो इन पे काम कर रही है, लेकिन स्वयं के स्तर पर भी हमें प्रयास करना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। आगे हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि जिस तरीके से लगातार वनों की संख्या कम होती जा रही है, जन चेतना लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए इस पृथ्वी पर उपयोगी जल की मात्रा कम होती जा रही है, हम मानवों को ऐसे कौन कौन से क्रियाकलापों में सुधार करना होगा जिसके माध्यम से हम जल को और अधिक मात्रा में संचित कर सकते हैं और जल की बचत कर सकते हैं।
1: सबसे बड़ा सुधार तो यह होगा सर कि लिए जैसे हम लोग जो है पॉलिसी अपनाते हैं, हम दो हमारे दो, अब आज के डेट में ये हो गया है कि हम दो हमारे एक, वैसे ही हर व्यक्ति को कम से कम अपनी जीवन में 5 पौधे लगाना चाहिए। अगर 1 पौधे भी लगाते हैं और वह उस पौधे को 1 साल 2 साल 5 साल तक अगर सुरक्षा देते हैं तो जब तक वह स्थायी हो जाता है पौधा, तो मेरा मानना यह है कि सभी व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम 5 पौधा लगाना चाहिए, और लगाना ही नहीं चाहिए, उसकी देखरेख जो है उसकी उम्र तक करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि पौधे की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, पौधे की मात्रा बढ़ेगी जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं जैसे कि प्रदूषण है वो समस्याएं भी खत्म होगी, जल का संकट है वो भी खत्म होगी, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम जानते हैं कि हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पेड़ पौधों से ही होती है, तो पेड़ पौधे अगर हम लगाते हैं तो बाकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होती है।
0: मतलब आपके मतानुसार हम समझ गए कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो इससे हमारा वायु तत्व और जल तत्व जो है वो दोनों शुद्ध रहेगा, और ये दोनों ही तत्व मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। जल के

0: संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही साथ इस बात का ख्याल भी रखा जा रहा है कि जो जल उपलब्ध है वह प्रदूषित न हो। प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है, तो जल प्रदूषण के संदर्भ में ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं, इस बारे में हमारे साथियों को बताएं।
1: इसके लिए मैं यह बताना चाहूँगा सर कि जल का जो प्रदूषण है उसके लिए विभिन्न कारक जो है जिम्मेदार होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा कारण जो है वह देखा जा रहा है कि वनों का कटाव। और वनों का कटाव क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारी आवश्यकताएं बढ़ी है। आवश्यकताएं बढ़ने के कारण हम एक पौधे लगा रहे हैं और 5 पेड़ काट रहे हैं। तो हम पौधे लगा तो रहे हैं लेकिन पौधे को पेड़ बनने नहीं दे रहे हैं और पेड़ को हम काट ले रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि वनों का जो ह्रास हो रहा है और वनों के ह्रास से फिर जल की जो संकट की जो समस्या है वो पैदा हो रही है। दूसरा कारण यह है कि घर या घर के आसपास जो भी कूड़ा कचरा है, इन कूड़े कचरे को हम जो है खाली जगह पर डाल देते हैं। खाली जगह पर अगर डालते हैं तो वहाँ की जो उसकी उर्वरकता है वह कम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर पौधे लगाते तो हैं लेकिन वह वृक्ष नहीं बन पाता है। जिसके कारण हम चाह रहे हैं कि हम पौधे लगाए हैं लेकिन वह वृक्ष नहीं बन पाया, जिसके कारण वहाँ के आसपास का जो वातावरण है वह दूषित हो जाता है, जिसके कारण पौधे जो है वह सक्सेस नहीं हो पाता है। तो जिसके भी पौधे के सक्सेस नहीं होने के कारण जल की जो समस्या है उसमें भी फिर से कमी आ रही है। तीसरा जो कारण है वह यह है, आसपास के गाँव इलाके हैं या शहरी इलाके हैं, वहाँ का जो पानी की जो निकासी है, पानी की निकासी हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि वह रिसाइकल हो सके या पुनर्चक्रण हो सके। पानी जो है पौधे तक अगर पहुंचता है तभी उसका पुनर्चक्रण होता है। अगर पौधे तक नहीं पहुंच पाता है, अगर वह जो है ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है, उनकी जड़ों से अगर पानी दूर हो जाता है तो उसका अवशोषण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसका चक्रण नहीं हो पाता है या उसका शुद्धिकरण जो है नहीं हो पाता है। तो और भी ऐसे कारक हैं जिनसे हम जल चक्र को जो है सही कर सकते हैं। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि तापमान में वृद्धि मेन कारण जो तापमान जो मुख्य है तापमान में वृद्धि का, वह विभिन्न प्रकार के जो सुविधाजनक चीज़ें जो हैं उनका उपयोग करके कर।
0: निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महती जानकारी हमारे भाइयों को दी। जल संरक्षण के क्षेत्र में यह एक नव चेतना का कार्य करेगी। इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों बहनों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान भाइयों, गर्मी का मौसम चल रहा है और निश्चित तौर पर इस समय हमें गर्मी का अनुभव भी हो रहा है। साथ ही साथ देखने में आ रहा है कि गर्मी के इस प्रभाव का जो प्रकोप है ये हमारे सभी जीव जंतुओं के ऊपर भी पड़ रहा है। साथ ही साथ जीव जंतु और पक्षी जगत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे वे किसान भाई जो इस समय दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। और देखने में आता है कि हमारे जो दुधारू पशु होते हैं उनकी दुग्ध क्षमता कम हो जाती है गर्मी के प्रभाव से। साथ ही साथ पशुओं के खान पान का भी ध्यान रख

0: रखना पड़ता है। इसी तारतम्य में आज हमारे साथ हैं श्री गीतेश पटले जी, जो ग्राम घूबड़गोंदी के निवासी हैं और बहुत ही अच्छे सफल पशुपालक माने जाते हैं ये अपने गाँव के। तो पटले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार और धन्यवाद
0: जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपके यहाँ पर गाय और भैंस दोनों ही नस्लों के जानवर आप दुग्ध उत्पादन के लिए पालते हैं, तो गर्मी में किस किस तरह की प्रारंभिक सावधानी

0: इनकी उत्पादन क्षमता में, दुग्ध उत्पादन क्षमता जो होती है उसमें कमी आ जाती है, और ये 25 से 30% तक की कमी आ जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस गर्मी से पशुओं को कैसे राहत दी जाए और हमारा दुग्ध उत्पादन प्रभावित न हो, इन सब विशेष बातों पर हम ध्यान देते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो इसके लिए कई उपाय भी करते हैं हम समय समय पर, और वो उपाय अनिवार्य रूप से आवश्यक हो जाते हैं ताकि उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो।
1: बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, और हमारे कुछ किसान भाई जो हैं वो उपाय अवश्य करते हैं। तो हम आपके परिक्षेप्य में जानना चाहेंगे कि किस किस तरह के उपायों को आप इन दुधारू पशुओं के लिए अपनाते हैं जिससे इन पशुओं को लाभ मिलता है।
0: जहाँ तक हम लोग सामान्यतः जो तापमान में वृद्धि होती है गर्मी का जब समय आता है तो पशुओं की जो शारीरिक क्षमता है, शारीरिक तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान में वृद्धि होने के कारण उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो उसको बनाए रखने के, नॉर्मल या संतुलित बनाए रखने के लिए, उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए हम पशुओं को प्रतिदिन जो है आपको ठंडे पानी से नहलाना चाहिए, तेज़ धूप और लू में नहीं रखें, इनके लिए ऐसे आवास को वातावरण को बनाएं जहाँ पर ठंडक बनी रहे। साथ ही अगर और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करनी है तो या तो आप वहाँ पर किसी प्रकार की खस या जूट से बने हुए बोरों से पर्दे लगा दें ताकि लू से वे प्रभावित न हो। साथ ही इनके सर और गर्दन वाले भाग को ठंडे पानी से पानी डालते रहें, जिसके कारण कभी कभार दिन में 2-3 बार ऐसा करें तो क्या होता है, तापमान कम रहता है जिसके कारण उनकी उत्पादक क्षमता बनी रहती है और बढ़ जाती है। आप सामान्यतः आहार के लिए विशेष बल देना चाहिए क्योंकि इस समय हरे चारे की का अभाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस अभाव को दूर करने के लिए मैं तो यही करता हूँ कि मार्च और अप्रैल के पहले ही, मैंने फरवरी माह में ही मक्का है, मूंग है, इसका बोआना कर दिया था। तो जो जिसका उत्पादन होने लगा और उसका मैं प्रयोग करता हूँ पशुओं को खिलाने के लिए, जिसके कारण क्या होता है कि इनको प्रॉपर स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार भी प्राप्त हो पा जाता है और साथ ही ये पशुओं के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि भी होती है और उनके शरीर का तापमान सामान्य और संतुलित बना रहता है। इसके साथ साथ आगे और भी उपाय हैं जिनमें सबसे ज़रूरी उपाय यह है कि पशुओं को नहलाने के साथ साथ पशुओं के लिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए और कई उपाय में उनको एनर्जी ड्रिंक दिए जा सकते हैं। रसोइयों का जो जूठन है या जो पुराना खिलाते हैं वो ना खिलाएं, वो पानी ना पिलाएं जिसके कारण उनको किसी प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां ना हो।
1: बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। देखने में आ रहा है कि हमारे कुछ किसान भाई जो हैं वो अपने खेतों में बरसीम भी लगाते हैं और आपके खेतों में भी काफ़ी मात्रा में बरसीम लगाई गई है। किस तरह हरे चारे का प्रभाव आप अपने पशुओं में देखते हैं और किस तरह गुणकारी होता है ये हरा चारा इस गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं के लिए, इस बारे में बताएं।
0: हरा चारा जिसमें बरसीन, तो बरसीन भी लगाते हैं हम, तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभदायक इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्वादिष्ट और ये पौष्टिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इसमें दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। दुग्ध उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि होने के कारण ये ज़्यादा लाभदायक होता है इस समय। लेकिन के साथ साथ इस बीच में पशुओं को कई समस्याएँ होती है, इन समस्याओं को भी समय समय पर जाँचना जरूरी है। जैसे गर्मी के कारण हाँपते हैं, भोजन नहीं करते, अरुचि रहती है उनको, मुंह जीभ बाहर निकालते हैं बार बार, ये झाग आना, ये कई प्रकार की समस्याएं गर्मी के समय होती है और ये सिर्फ पानी की कमी के कारण होती है या फिर किसी प्रकार के अन्य बीमारियों के कारण होती है जिसके कारण उत्पादन क्षमता और भी घट जाती है।
1: निश्चित तौर पर आपके अभूतपूर्व प्रयास जो हैं वो जारी हैं और स्थिति के साथ आप सामंजस्य बिठाए हुए हैं। क्या पंखे कूलर वगैरह की व्यवस्था भी आप अपने पशुओं के लिए करते हैं, और मच्छर वगैरह जैसा परेशान करते हैं तो फिर इसके लिए किस किस तरह के उपाय अपनाते हैं आप, इस बारे में हमारे किसान साथियों को बताएं।
0: जी हाँ, बहुत सही बात याद दिलाई आपने कि हम लोग अपने जो पशु हैं, दूध उत्पादक जो पशु हैं, उन पशुओं को और ज़्यादा के तापमान में संतुलित तापमान बना रहे और उत्पादक क्षमता प्रभावित न हो, इसलिए हम कूलर की व्यवस्था भी की है हमने ताकि तापमान सामान्य बना रहे। और समय समय पर आपको मैंने पहले ही बताया कि जानवरों को कम से कम दिन में एक बार जरूर नहलाना चाहिए ठंडे पानी से, पानी समय समय पर पिलाना चाहिए, दिन में कम से कम 3 बार आपको पानी पिलाना चाहिए। और साथ ही अगर आप कूलर नहीं लगा सकते तो कम से कम पंखे की व्यवस्था करें और ऐसे स्थान में बांधें, आवास जो पशुओं का आवास होता है वह ऐसे स्थान में रखें जहां तापमान बहुत कम हो, बहुत ज्यादा तापमान न, बात का विशेष ध्यान रखें।
1: कभी कभी देखने में आता है कि गांव में हमारे जो किसान भाई होते हैं वो बोरे वगैरह लगाते हैं, आपके यहाँ पर चूंकि पंखे और कूलर की अच्छी व्यवस्था है तो खिड़कियों के ऊपर जो बोरे लगाकर आपने रखे हैं तो इसका कैसे प्रबंधन करते हैं आप?
0: दरअसल हमारे पास कूलर की व्यवस्था तो हम उन क्षेत्र जहाँ पर खिड़कियाँ होती है और जहाँ पर्दे हमने लगाए उन पर्दों को पानी से गीला कर दे, जो जूट के बने हुए थे सामान्यतः बोरे से बने हुए होते हैं, तो उसको पानी से गीला करते रहते हैं दिन में 2-3 बार 4 बार, तो उसके कारण क्या होता है ठंडी हवाएं और अंदर का तापमान जो है सामान्य बना रहता है, जिसके कारण पशुओं को राहत मिलती है और निश्चित रूप से वो गर्मी से निजात पा पाते हैं।
1: निश्चित तौर पर आपने जो जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, और सभी किसान भाई खासकर वे किसान भाई जो दुग्ध पशुओं का पालन करते हैं वो इस समय और इस बातचीत को सुनकर निश्चित तौर पर फायदा लेंगे। पटले जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।

0: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सभी डाले।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: संतोष भैया, आज हमने अपने किसान साथियों को जो जानकारी दी है, उम्मीद करते हैं कि उस जानकारी से हमारे किसान साथियों का फ़ायदा होगा और उन बातों को वो अमल करेंगे। और किसान साथियों, इसी के साथ, इन्हीं गीतों के साथ, इन्हीं बातों के साथ, आज के इस किसानवाणी के इस अंक से हम आपसे विदा लेते हैं। अगले अंक को लेकर हमारे और हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वीकार करें नरेश सिंह अंधुपे
4: और संतोष बिसेन का
3: नमस्कार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। शाम के रात के 8 बजे हैं। अब अगला कार्यक्रम प्रस्तुत है, कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम एक नगमा लेकर आए हैं, आइए पहले इसे सुनते हैं।

लता मंगेशकर के गाए हुए इस गीत को हमने लिया था फिल्म बहारों के सपने से। इस फिल्म में इस गीत की रचना की थी मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। अब वक्त है अगले गीत का।

अभी आपने सुना सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में बदतमीज़ फिल्म का गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और बोल थे हजरत जयपुरी की। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म जमीर से। आवाज़ है किशोर कुमार की, संगीत है सपन चक्रवर्ती का और बोल है साहिर लुधियानवी के।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आइए सुनते हैं फरार फिल्म का ये गीत।
1: अरे ओ छोरी,
2: क्या
1: मिलने आती है चोरी चोरी और सारे गांव के सामने करती है सीना जोरी।
2: ये आंखें किसको दिखाता है रे तू?
1: आंखें

कार्यक्रम का अंतिम गीत ये सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में। संगीत है आर डी बर्मन का, बोल है गुलशन के और फिल्म का नाम है अगर तुम ना होते।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, अब वक्त हुआ है कार्यक्रम पॉप म्यूजिक का, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: This evening. Do I sound a little cheesy?

इसी गीत के साथ कार्यक्रम पॉप म्यूजिक यहीं समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के साथ मैं था आपका रेडियो मित्र अर्पित किशोर बलभद्र। श्रोताओं, रात के 8:45 होने को हैं। अब हम रिले करेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और

0: नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में

0: दो दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
0: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी।

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 के

राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहूं, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAH के यानी हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई ये फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की धूम रही।

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या, अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शंस, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी।

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन धन।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए, हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। पारिजात की खुशबुओं से मुअत्तर ये हसीन रात, सहमे गुलशन में फूलों के हसीन साए, चांद सितारों की ये चिलमन, शोख नजारों की ये अंगड़ाइयां, तो धड़कनों की जुबानी मोहब्बत की कहानी अजब समा दिखाती है। सच कहूं बुझती नहीं ये शम्मा, जले जाती है।

निशाद हैं जो शाद भी हो जाएंगे, एक हल्के से तबस्सुम से आबाद भी हो जाएंगे। गुलशन में उनका आना कुछ ऐसा ही होता है।

आने से समा और भी पुरनूर होता गया, रात कटती गई, चांद और भी निखरता गया। क्या कहूँ, चलो उनसे ही पूछ लेती हूँ, ऐसी उलझन में कट न जाए ये तमाम रात। इश्क में दोनों तरफ कुछ ऐसा ही समा होता है, ये अफसानाए मोहब्बत हरफों में कब बयां होता है।

रफ्तार धड़कनों की बताती है कि वो आए हैं। शाखे गुल की लचक है या शानों पे जुल्फों की बिखरी हैं लटें। ये परेशानियां वो आंखों को झुकाने की अदा, अपने आप को खुद से ही छुपाने की अदा। यूं लगता है कि आज ये दिल संभल न पाएगा, शबनमी कतरों पे रात का नूर बरस ही जाएगा।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ोगी?
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

संस्कृत भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

ढलती जाए रात। जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को है। अब हम रिले करेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: Our discussions must advance.
2: हमारी

0: चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and